नतायज पेटे में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा। आज सन 2024 की अगस्त महीने की 13 तारीख है और दिन है गुरुवार। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश

कार्यक्रमको रूपरेखा यहाँ आकाशवाणी टाइनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के ठीक 6 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। गालो श्रोताओं के पूरा कार्यक्रम सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 424.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम बात करते हैं हमारे स्वस्थ जीवन शैली की और साथ ही सुनेंगे कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी लेकर आती है। हमारा कल चाहे जैसा भी बीता हो, रात को हम कितनी भी चिंताओं के साथ सोए हो, लेकिन सुबह की नई धूप की किरणें हमें फिर से एक नया हौसला देती है। ये एहसास दिलाती है कि आज एक नया दिन है, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर सोचने का। कल की बातों को छोड़कर हम आज एक नई कहानी लिख सकते हैं, और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम हर सुबह आपके साथ लेकर आते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम, जहां बातों का सिलसिला होता है सेहत, सुकून और एक बेहतर जीवन का। यहां हम आपको देते हैं कुछ हेल्थ टिप्स और जरूरी जानकारियां जो आपको स्वस्थ और एनर्जेटिक रखने में थोड़ी सी मदद जरूर करेगी।

और आज इस शांत सुबह में चलते हैं एक ऐसे विषय की ओर जो हमारे मन और शरीर दोनों को सुकून देता है, वह है ध्यान यानी मेडिटेशन। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए कोई खास जगह चाहिए, शांत कमरा चाहिए या लंबा समय चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि ध्यान आप कहीं भी कर सकते हैं। सुबह की सैर के दौरान, बस में बैठे हुए, डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार करते समय, या फिर दिन के किसी भी छोटे ब्रेक में। ध्यान कोई नई चीज नहीं है, हजारों सालों से ये हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। पहले ध्यान को जीवन की गहराई, अध्यात्म और आत्मचिंतन से जोड़ा जाता था। आज के समय ध्यान को सबसे ज्यादा तनाव कम करने और मन शांत रखने के लिए अपनाया जाता है। ध्यान एक तरह से मन और शरीर के बीच संतुलित बनाने की प्रक्रिया है। जब हम अपने मन को धीरे धीरे शांत करना सीखते हैं, यही वजह है कि ध्यान हमें गहरी शांति और मानसिक स्थिरता देता है। ध्यान के समय हम अपने ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करते हैं, जैसे सांसों पर, किसी शब्द पर या फिर किसी शांत विचार पर। इस प्रक्रिया में हमारे मन में चल रही लगातार सोच, चिंताएं और तनाव भरे विचार धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन हल्का होता है तो उसका असर हमारे शरीर पर और भावनाओं पर भी पड़ता है। यही कारण है कि ध्यान से भावनात्मक और शारीरिक सेहत दोनों बेहतर होता है।

दोस्तों, ध्यान सिर्फ सुकून देने तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी मजबूत करता है। नियमित ध्यान करने से हमारा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है, फोकस बेहतर होता है और मन भटकता कम है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या फिर रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, उन सभी के लिए ध्यान बहुत मददगार साबित होता है। ध्यान से याददाश्त बेहतर होता है, समस्याओं को समझने की क्षमता बढ़ती है और हम चीजों को ज्यादा साफ तरीके से सोच पाते हैं। आज की रिसर्च भी यही बताती है कि नियमित ध्यान दिमाग की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान से दिमाग के उस हिस्से को मजबूती मिलती है जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, ध्यान से दिमाग में याददाश्त और भावनाओं को संतुलित करने वाले हिस्से पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ध्यान न सिर्फ आज के लिए बल्कि भविष्य में भी दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और अब बात करते हैं शरीर की। ध्यान का असर सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता। ध्यान करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, दिल पर तनाव कम पड़ता है और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा घटता है। जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर एक गहरे रिलैक्सेशन की अवस्था में चला जाता है। इससे नींद बेहतर होती है, थकान कम महसूस होती है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है।

0: दोस्तों बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेंगे रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस बीच सुन लेते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला गीत परिणीता फिल्म से पीयू बोले, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।
1: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
2: बची है
3: पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
1: अरे नो यू नो

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad, like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ सौ लिए हैं.

दोस्तों, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे, और हम बात कर रहे थे ध्यान यानी मेडिटेशन की। और दोस्तों, अक्सर एक सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है कि ध्यान कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो दोस्तों, ध्यान का कोई एक सही तरीका नहीं होता। जैसे हर इंसान अलग होती है, ध्यान का तरीका भी हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है गहरी सांसों पर ध्यान देना। अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और फिर आराम से सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखें, नाक से हवा अंदर जाती हुई और बाहर निकलती हुई। जब मन इधर उधर भटके तो खुद को डांटिए मत, बस प्यार से फिर से अपनी सांसों पर लौट आइए। यही ध्यान की असली शुरुआत होती है। एक और सरल तरीका है अपने शरीर को महसूस करना। ध्यान के दौरान धीरे धीरे अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान ले जाइए। पैरों से लेकर सिर तक, कहीं तनाव है, कहीं हल्कापन है, कहीं गर्माहट है, बस उसे महसूस कीजिए। इससे हमें अपने शरीर के ज़रूरतों को समझने में मदद मिलती है और तनाव अपने आप कम होने लगता है। कुछ लोग किसी शब्द या मंत्र को दोहरा कर ध्यान करना पसंद करते हैं। ये कोई धार्मिक मंत्र भी हो सकता है या फिर कोई साधारण सा शब्द जो आपको सुकून देता हो। उस शब्द को धीरे धीरे मन में दोहराइए। ये मन को भटकने से रोकता है और एकाग्रता बढ़ाता है।

और कई लोगों के लिए प्रार्थना भी ध्यान का ही एक रूप होता है। अपने शब्दों में ईश्वर से बात करना या किसी लिखी हुई प्रार्थना को पढ़ना, ये भी मन को शांत और स्थिर करता है। इस तरह अच्छी किताबें पढ़ना, कविताएं

या प्रेरणादायक विचारों पर कुछ पल चिंतन करना भी ध्यान का हिस्सा है। तो दोस्तों, ध्यान कोई मुश्किल साधना नहीं, बल्कि खुद को मिलने का एक आसान रास्ता है। दिन की शुरुआत अगर कुछ शांत पलों से हो जाए तो पूरा दिन अपने आप बेहतर लगने लगता है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ आप स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और हमेशा मुस्कुराता रहिए। तो दोस्तों, आज की स्वस्थ जीवन शैली की बातचीत में आज बस इतना ही। आइए अब सुबह सवेरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, युवराज फिल्म से तू मेरी दोस्त है, बिनी डायल और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

इसी के साथ ही दोस्तों सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार।

लोहो के पन्योर होगा डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स आता है के पन्योर मिनी सेक्रेटेरिएट उदे हो मीटिंग को दुकुन सलामत लीदा ला सिकारी जो लेंबा लपा होगा दुलुंपुल अवधो नमी भयो अपर सुबंश्री होगा तीसी तसोगांबो एसपी पवन कुमार यादव ला तागिन कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट लार्जी रिगिया मोलू का कतलामत हेका दुलुमी पूजा दुपा पुलो बर्ण्य समा म्यो दुम्यो लोला गिला मकिंदोरा होपा हेका लेंबा अन्य होगा म्यो अतामी आहाया नुपा हेंबो न्यापे हेला प्रेसिडेंट रिगिया मोलू पलामने हरगर तिरंगा कैंपेन दई पाबियो तावंग होका एडमिनिस्ट्रेशन सातांग हु तावंग होका जायंट बुद्धा स्टेचू होकला तावंग वार मेमोरियल ये तिरंगा यात्रा मगला मत हेका यात्रा हो हिम्याता 100 मीटर उबियो नेशनल प्लेग में बुतोला यात्रा इला मत बुयो का यात्रा में तावंग का डिप्यूटी कमिश्नर रिंचिन लेता मोमोको बिला मत हिरा का यात्रा में इंडियन आर्मी पर्सनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री फोर्सेस अताला तावंग दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज होका स्टूडेंट्स अता इंबोला मत बोलेंग ला बाबो एरिया लपा होका सियांग किले हाव होका कम्मुक दुलुंग पुला दोन बोमी बुयो आरडीएन पंचायती राज का मिनिस्टर ओजिंग तासिंग मोसर्बे मुआला काकाहाला आत मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होका 72 जूनियर स्पेशलिस्ट पका पाइला मन डॉक्टर सतामी बुयो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मोलो का अपॉइंटमेंट पोतामी बिलिंगकुला मोलो मी फेलिसिटेट मुलामत सीसीट्रीएम सो स्पेशलिस्ट डॉक्टर पा 35 वैकेंसीज तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो 61 वैकेंसीज तो हिरा जीडीएम ओस्पतरे सीसी 79 पोस्ट तो हललुकोलालो तो सिपुंका हिम्मे एलेंबा आसाम अरुणाचल बॉर्डर होका पासुगा सुला मला दोन पुगोमी तैलो मसुदु पाहला बुयो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अपसु गालो स्टूडेंट यूनियन ला डोलोक बंगो वेलफेयर सोसाइटी होका रिप्रेजेंटेटिव्स आतांगी हो मीटिंग आको दुकुन सलामत हेका मीटिंग हो मोमला रुमी सका पुगोसमी यानु या ब्यापा तैलु मोसुदोपा मुन्यातो हो पसुगा सुन्यायो हला मो तंसर खेन्यो लालुत हिरा कोलो मंदे आलो होका मिंगमंग बस्ती होका आसाम अरुणाचल म्यू आतंका पसुगा सुलामु को हो म्यू अबुलोता उनेतरे गलामुतो हला लुको लालुतो पापुमपारेला अंजाव डिस्ट्रिक्ट को मुदो उरो हुला मकिंदो हला लुकोला सेका डिस्ट्रिक्ट सान्यमे इटानगर होका मेट्रोलॉजिकल सेंटर आता हे येलो अलर्ट्स बिलिला मत हेरा इटानगर मेट्रोलॉजिकल सेंटर हे नामसाईला चांगलांग डिस्ट्रिक्ट सोतारे मुदो उरो हुला मकिंदो हला लुकोला लुदो सुरो कतन पुलु कसान हम कने सिसे बसरा तो प्रोग्राम में मलिम बई सुरनो का पिचापा हागी तन्यो का बसने में तपतो दो

दोस्तों, अभी आपने सुना आपातकालीन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। और इस कार्यक्रम के तहत आज मैं आपको बताऊंगी आज की यानी 13 अगस्त की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां।

तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं आज का दिन इतना खास क्यों है। इतिहास में तारीख है केवल कैलेंडर की संख्या नहीं होती, बल्कि वे अपने भीतर समय की कुछ कहानियां समेटे रखती है। हर तारीख किसी न किसी घटना, उपलब्धि या बदलाव की गवाह रही होती है। जब हम किसी तारीख को पलट कर देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि उसी दिन अतीत में कुछ ऐसा घटा था जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा तय की। इसीलिए हर तारीख अपने आप में खास होती है और समय के साथ उसकी अहमियत और भी गहरी होती जाती है। तो आइए नजर डालते हैं 13 अगस्त की ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। तेरह अगस्त 1942 को नागपुर में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक बड़े डेमोन्स्ट्रेशन पर पुलिस ने फायरिंग की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रेस्पोजिटरी के अनुसार 14 वर्ष के निखारे किशन जागो भी इस डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हुए थे और पुलिस फायरिंग में उनकी जान चली गई। क्विट इंडिया मूवमेंट के तुरंत बाद नागपुर में 10 से 14 अगस्त तक हड़ताल, प्रोसेशंस और चले जाओ मूवमेंट काफी तेजी से फैला। तेरह अगस्त 1942 को बिहार के गया में फ्रीडम फाइटर नरसिंह नारायण सिंह ने कॉटन एंड जूट मिल से एक ब्रिटिश विरोधी प्रोसेशन का नेतृत्व किया। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के तुरंत बाद हुआ था। उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया और 2 साल की सजा दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए 1972 में भारत सरकार ने उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। 13 अगस्त 1961 को ईस्ट जर्मनी ने ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच बॉर्डर को बंद करना शुरू किया। रात के समय ईस्ट जर्मन सोल्जर्स ने बर्बेड वायर और टेम्पररी बैरियर लगाए, जिसके बाद धीरे धीरे कंक्रीट बर्लिन वॉल का निर्माण हुआ। इस दीवार का एक बड़ा उद्देश्य ईस्ट जर्मनी से वेस्ट की तरफ बढ़ रहे लोगों के पलायन को रोकना था। बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर का एक पावरफुल सिंबल बन गई और 1989 में गिरने तक यूरोप के डिवीजन की निशानी बनी रही। तेरह अगस्त 2004 को ग्रीस के एथेंस में समर ओलंपिक गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी हुआ। एथेंस को ओलंपिक्स का हिस्टोरिकल बर्थ प्लेस माना जाता है, इसलिए 2004 गेम्स का सिंबलिक महत्व भी बहुत बड़ा था। ये 1896 के मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बाद एथेंस में होने वाले दूसरे समर ओलंपिक्स थे। 13 अगस्त 1521 को दुनिया के इतिहास में एक बड़ा बदलाव हुआ जब स्पेनिश फोर्सेस ने मेक्सिको एम्पायर की राजधानी टेनोच्टिटलान पर कब्जा कर लिया। लगभग 75 दिन की घेराबंदी के बाद शहर ने सरेंडर किया। ये घटना मेक्सिको और पूरे अमेरिका के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई।

13 अगस्त 1891 मणिपुर के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन वीर तिकेंद्रजीत सिंह और जनरल थांगा को ब्रिटिश ऑथोरिटीज ने इम्फाल के बेदबुंग में सबके सामने फांसी दे दी। दोनों ने एंग्लो मणिपुर वार ऑफ 1891 के दौरान ब्रिटिश इंटरवेंशन का डटकर विरोध किया। वीर तिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर के क्राउन प्रिंस होने के साथ साथ मणिपुरी आर्मी के कमांडर भी रहे, जबकि जनरल थांगा ने भी ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश फोर्सेस ने दोनों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चलाया और अंत में 13 अगस्त को पब्लिक एग्जीक्यूशन के जरिए उनकी जान ले ली। उनकी शहादत की याद में हर साल 13 अगस्त को मणिपुर में पेट्रियट्स डे मनाया जाता है, एक ऐसा दिन जो इन वीर योद्धाओं के साहस, बलिदान और अपनी भूमि के प्रति समर्पण को याद करता है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके तुरंत बाद हम नजर डालेंगे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। तो आप सुनते रहे अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियों पर दी अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है। टीएमपी के ब्लॉकेड ओवर हिमे फायरिंग डिस्टर्ब्स अरुणाचल। ताका मिसिंग पोरिन कबंग यानी टीएमपी के द्वारा हिमे फायरिंग इंसिडेंट को लेकर लगाया गया इकोनॉमिक ब्लॉकेड अरुणाचल प्रदेश में सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। बंद के दौरान कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और बाजारों पर भी इसका असर देखा गया। मुद्दे को लेकर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगली हेडलाइन है, ईटानगर सिविक बॉडी बैंस सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स और 120 माइक्रोन से कम मोटे वाले प्लास्टिक कैरी बैग्स पर सख्त रोक लगा दी है। दुकानदारों, होटल्स, स्टोरीज और स्ट्रीट वेंडर्स को इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट ड्राइव्स भी चलाई जाएंगी। अगली हेडलाइन है, गवर्नमेंट वर्किंग टू स्टार्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज एट ट्रिम्स। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि राज्य सरकार सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के सहयोग से तोमरुबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज यानी ट्रिम्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। अगर ये सुविधा शुरू होती है तो राज्य के पेशेंट्स को एडवांस्ड ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने की जरूरत कम हो सकती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स पावरफुल टूल्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट सोसाइटी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक ने कहा कि खेल और स्पोर्ट्स एक मजबूत और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने युवाओं से फिटनेस और खेल को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की अपील की। उनके अनुसार स्पोर्ट्स से टीम वर्क, डिसिप्लिन, लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे गुण भी विकसित होते हैं। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन है, तामंग याजुम क्लिंच मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल्स। यूनिक्स सनराइज 13th दोर्जी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में तवांग के सैमुअल तामंग ने मेंस सिंगल्स और कमले के ला याजुम ने वुमेन सिंगल टाइटल जीता। फाइनल में तामंग ने अंजो के निखिल छेत्री को हराया जबकि याजुम ने तवांग के तारिंगानिया को मात दी। चैंपियनशिप में अरुणाचल के अलग अलग जिलों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगली हेडलाइन है, तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज्ड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ पेट्रियटिज्म एंड यूनिटी। इंडिपेंडेंस डे से पहले अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। दिरंग में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, दापोरिजो में तिरंगा बाइक रैली हुई और तवांग में जायंट बुद्धा स्टेचू से तवांग वॉर मेमोरियल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगा के प्रति सम्मान का संदेश देना है। HRI सर्वे फाइंड्स वाइडस्प्रेड हैरेसमेंट ऑफ LGBTQIA+ इन अरुणाचल। हिमकाई रिसर्च इनिशिएटिव के एक नए सर्वे में अरुणाचल प्रदेश में LGBTQIA+ लोगों के सामने आने वाली हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी जैसे मुद्दों को दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में आइडेंटिटी छुपाने और डिस्क्रिमिनेशन के कारण होने वाली परेशानियों पर भी चिंता व्यक्त की गई है। एडमिन स्टेक होल्डर्स इंस्पेक्ट ब्रिज ओवर डिले कंसर्न। अपर सुबनसिरी के दापोरिजो में सुबनसिरी रिवर पर बन रहे ब्रिज का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य स्टेक होल्डर्स ने निरीक्षण किया। ये ब्रिज लीदा विलेज और शिकारीजो को जोड़ने वाला है। ब्रिज के निर्माण में देरी को लेकर स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त की गई थी जिसके बाद अधिकारियों ने साइट का जायजा लिया। अगली हेडलाइन है, डी इनवाइट्स यू टू पार्टिसिपेट इन जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स, यूथ और एस्पायरिंग इनोवेटर्स को जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा, रचनात्मक और इनोवेशन को एक राष्ट्रीय मंच देना है।

ईटानगर ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों से आज बस इतना ही। आइए अब मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से दी सरजो, क्लिंटन सरजो और लॉय मेंडोंसा की आवाजों में सूरज की बाहों में।

इसी के साथ दोस्तों मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

हमारे आरोन एफएम और मीडियम वेव के सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का आरोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अब आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम सदाबहार। आइए सदाबहार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। सुनते हैं कश्मीर के कली फिल्म से दीवाना हुआ बादल, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?
5: प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
6: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
7: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
8: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
6: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
9: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे है एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
6: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज

0: विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
1: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहे।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहे और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहे।

0: संसद परिसर तक पहुंच गया है।
1: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश।

0: शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर एक से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कलकत्ता हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103।

ये रेडियो साथी आरजे तन्या। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो तनागर कार्यक्रम में। और आज हम इस कार्यक्रम के तहत बात करने वाले हैं जनरेशन गैप की, यानी दो पीढ़ियों के बीच सोच, पसंद, आदतों और जीवन जीने के तरीके में आने वाले अंतर की। और इसी सिलसिले में आजकल जिस जनरेशन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है जेन जी। आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वालों को जेन जी कहा जाता है, यानी आज के किशोर पीढ़ी से लेकर 20 से 30 की उम्र के आसपास के बहुत से युवा इस जनरेशन का हिस्सा है। लेकिन जेन जी को सिर्फ उम्र के आधार पर समझना शायद काफी नहीं होगा। इस पीढ़ी को असल में शेप किया है उस माहौल ने जिसमें ये बड़ी हुई है, जहाँ इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर होती है। आप जरा सोचिए, पिछली पीढ़ियों के लिए किसी नई चीज के बारे में जानना हो तो किताबें थी, अखबार था, शिक्षक थे, बड़े बुजुर्ग थे, किसी से मिलने या फोन करने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज का युवा किसी भी सवाल का जवाब कुछ ही सेकेंड्स में खोज सकता है। दुनिया के किसी दूसरे कोने में क्या चल रहा है ये जानने के लिए अगले दिन के अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक वीडियो देखी, दूसरी राय सुनी और तुरंत अपनी राय बना ली। इसका अच्छा पक्ष ये है कि आज का युवा ज्यादा जागरूक है, नई चीजें सीखने के लिए ज्यादा उत्सुक है और सवाल पूछने से भी नहीं डरता।

लेकिन दोस्तों हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। जिस सोशल मीडिया ने दुनिया को हमारे करीब ला दिया, उसी ने तुलना की आदत भी बढ़ा दी है। किसी की शानदार नौकरी, किसी की विदेश यात्रा, किसी का खूबसूरत घर, किसी की परफेक्ट लाइफ, सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देता है और फिर हम अनजाने में अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करने लग जाते हैं। जबकि सच तो ये है कि सोशल मीडिया पर हमें किसी की पूरी जिंदगी नहीं, उसका चुना हुआ हिस्सा ही दिखाई देता है। एक और बदलाव है धैर्य यानी पेशेंस कम होना। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत एंटरटेनमेंट, तुरंत इन्फॉर्मेशन। छोटी छोटी वीडियोस देखने की आदत इतनी हो गई है कि कभी कभी लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए नए जनरेशन को दोष देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिस डिजिटल दुनिया में ये पली बड़ी है, उसी ने उनकी आदतों को भी प्रभावित किया है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर और आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप की। दोस्तों आज अक्सर हमारे पेरेंट्स या ओल्डर जनरेशन को लगता है कि आज के बच्चों में पेशेंस नहीं है। हमारे जनरेशन में तो हम कम साधनों में भी खुश रहते थे, उनका ये कहना होता है। वही यंगर जनरेशन को लगता है हमारी परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं की जाती, और यही हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों जनरेशन्स की परेशानियाँ अलग है, लेकिन दोनों की परेशानियाँ वास्तविक भी है। पहले शायद नौकरी के अवसर कम थे, लेकिन आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले कंपैरिजन आसपास के कुछ लोगों से होता था, आज सोशल मीडिया के कारण हम हर दिन सैकड़ों हजारों लोगों की ज़िंदगी अपने सामने देखते हैं। पहले करियर के विकल्प कम थे, आज विकल्प बहुत है, लेकिन सही विकल्प चुनने का दबाव भी उतना ही ज़्यादा है। तो फिर क्या किया जाए कि इस दूरी को कम कैसे किया जाए? और शायद सबसे पहला रास्ता है एक दूसरे की दुनिया को समझना। आज इसका एक दिलचस्प उदाहरण हमें कम्युनिकेशन के तरीके में देखने को मिलता है। जैसे हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर गेट रेडी विथ मी यानी GRWM जैसे लोकप्रिय फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए लोगों से हैंडलूम पहनकर वीडियोस बनाने की अपील करी थी। अब इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरह देखने के बजाय थोड़ा बड़े नजरे से देखिए। एक तरफ है हमारी पारंपरिक हैंडलूम संस्कृति और दूसरी तरफ है आज की डिजिटल दुनिया। दोनों को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका चुना गया जिसे युवा पहले से समझते और इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ना कि नो योर ऑडियंस, यानी आप जिन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उन्हीं के तरीके इस्तेमाल करिए।

ही तरीका हमारे घरों में भी अपनाया जा सकता है। अगर कोई पेरेंट बच्चे से सिर्फ ये पूछने के बजाय कि इतना देर फोन पर क्या करते रहते हो, एक दिन उनसे पूछे, मुझे भी बताओ ये रील कल्चर क्या है, कभी उनके साथ थोड़ी रील बना लीजिए तो शायद बातचीत और एक दूसरे की दुनिया को समझने की शुरुआत हो सकती है। और यंग जनरेशन भी अगर हर बार ये कहने के बजाय कि आप नहीं समझेंगे, अपने पेरेंट्स से उनकी एक्सपीरियंसेस पूछे, थोड़ा पेशेंस के साथ उनकी बातें सुन ली जाए तो शायद कोई ऐसा अनुभव सुनने को मिले जो किसी सर्च इंजन में नहीं मिलेगा। एक जनरेशन के पास एक्सपीरियंस है, दूसरे के पास न्यू पर्सपेक्टिव। एक ने दुनिया को बदलते हुए देखा है, दूसरी उसी बदलती दुनिया में पैदा हुई है। अगर दोनों अपनी अपनी ताकत लेकर साथ चले तो जनरेशन गैप सिर्फ एक दूरी नहीं रहेगा, बल्कि दो जनरेशन के बीच एक ब्रिज बन सकता है।

तो दोस्तों, हेलो तनगर कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला आज ही ख़त्म करते हैं और कार्यक्रम के अंत में एक और गीत सुनते हैं। सच कह रहा है दीवाना, रहना है तेरे दिल में फिल्म से, और इस गीत को गाया है KK ने।

दोस्तों इसी के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निधि सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन किया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। उधर झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच चुका है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। ये विवाद 2010 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों को दो श्रेणियों ओबीसी ए और ओबीसी बी में विभाजित कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने और बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। और मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इससे आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा होने की आशंका है। कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. The Calcutta High Court has cancelled OBC certificates issued under the OBC-A and OBC-B classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. A division bench of Justice Rajashekhar Manta and Justice Anuj Singh, while delivering the judgment yesterday, said the two classifications no longer exist in the state and certificates issued under the earlier system have lost their validity. Holders of these certificates will now be treated as belonging to the general category. The controversy dates back to 2010 when the state divided OBC communities into OBC-A and OBC-B categories. In 2024, the High Court had struck down the inclusion of 66 communities in the OBC list and ordered a fresh survey. The Punjab and Haryana High Court has stayed the appointment process for the post of 454 pharmacy officers over allegations of a paper leak in the recruitment, the examination for which was held on 19th of July this year. The posts were advertised by Baba Farid University of Health Sciences in Faridkot. The next hearing of the case has been scheduled on 17th of September. The stay orders of the Punjab and Haryana High Court have come amid a political storm over the examination. Opposition parties, including BJP, Congress and Shiromani Akali Dal, have targeted the Aam Aadmi Party government and its leadership for attempting to downplay the alleged paper leak as a minor cheating case. President Draupadi Murmu will confer the Sangeet Natak Akademi Fellowships and Awards for 2024 and 25 over 115 artists in a special investiture ceremony today in New Delhi. Union Minister of Culture Gajendra Singh Shekhawat and Minister of State for Culture Rao Inderjeet Singh will remain present on the occasion. Delhi Traffic Police has put in place special traffic restrictions and diversions around the Red Fort in view of the full dress rehearsal of Independence Day 2026 today. In an advisory, the Delhi Traffic Police has noted that commuters without rehearsal parking labels are advised to avoid the C Hexagon India Gate, Copernicus Mark, Mandi House, Sikandra Road, Tilak Mark, Mathura Road, BSZ Mark, Netaji Subhash Mark, JL Nehru Mark, Ring Road between Nizamuddin Katta and ISBT Kashmiri Gate and Outer Ring Road via Salimgarh Bypass till 10 a.m. today. IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Odisha today, following the formation of a low pressure area over the North Bay of Bengal. According to IMD, places over Chhattisgarh are expected to experience heavy to very heavy rainfall till tomorrow. Pakistan Air Force carried out airstrikes in Balochistan's Surab district yesterday, killing more than 30 civilians, including women and children, and injuring dozens others. In a statement, the Republic of Balochistan group claimed that Pakistani Army and Air Force carried out extensive bombing and firing in civilian areas of the Gudar locality. And BCCI and Afghanistan Cricket Board have confirmed that Afghanistan will host India for a three-match T20 international series at the Arun Jaitley Cricket Stadium in Delhi from the 13th to the 17th of next month. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्मी गपशप का, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सिनेमा की दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, OTT अपडेट्स और साथ ही सबसे चर्चित सितारों की खबरें।

तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के फिल्म एक अपसप कार्यक्रम। और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें हिस्ट्री भी है, इमोशंस भी है और एक फैमिलियर बॉलीवुड जोड़ी की वापसी भी। बात करें हो सनी देओल और प्रीति जिंदा स्टारर बतवारा 1947 के पार्टीशन के बैकड्रॉप पर बनी ये फिल्म एक ऐसा दौर की कहानी लेकर आ रही है जहां सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदले बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई थी। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंदा, करण देओल, अली फजल और सबाना आजमी नजर आने वाली है। फिल्म 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और बतवारा 1947 को लेकर एक और रीजन है जो फैंस के लिए बहुत ही खास है। प्रीति जिंदा का कमबैक फिल्मों में, ऑलमोस्ट 8 साल बाद प्रीति बड़े पर्दे पर वापस आ रही है। अपने कमबैक के बारे में बात करते हुए प्रीति ने शेयर की कि सेट्स पर वापस आना उनके लिए बिल्कुल ईजी नहीं था। पहले दिन वो नर्वस थे लेकिन सनी देओल ने उन्हें कंफर्टेबल फील कराया। प्रीति जिंदा ने एक्टिंग से दूर रहने के दौरान मदरहुड को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा माइलस्टोन बताया और अब बतवारा 1947 के साथ वो एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। तो जिन लोगों ने प्रीति जिंदा को दिल से, कल हो ना हो और वीर जारा जैसे रोल्स में देखा है उनके लिए ये कमबैक डेफिनेटली एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट होने वाली है।

और अगली खबर जो बॉलीवुड की दुनिया से आ रही है इस वक्त, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और नॉस्टैल्जिक भी। अक्षय कुमार को हम जल्द ही राजेश खन्ना के किरदार में देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय लेजेंडरी कंपोजर आर डी बर्मन पर बनने वाली बायोपिक में राजेश खन्ना का रोल प्ले करने वाले हैं। अगर पंचम दा का किरदार और साथ ही पंचम दा का किरदार फरहान अख्तर निभाने वाले हैं। अब सोचिए, एक ही फिल्म में बॉलीवुड के दो गोल्डन आइकॉन्स की कहानी और उन्हें पोर्ट्रे करते हुए अक्षय कुमार और फरहान अख्तर नजर आने वाली है। इस प्रोजेक्ट को नीरज पांडे डायरेक्ट कर रहे हैं। अक्षय के लिए ये रोल और भी स्पेशल है क्योंकि राजेश खन्ना सिर्फ एक लेजेंडरी एक्टर ही नहीं बल्कि उनके फादर इन लॉ भी थे, तो स्क्रीन पर राजेश खन्ना को रिक्रिएट करना अक्षय के लिए डेफिनेटली एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और पंचम दा की बात चले तो उनकी म्यूजिक को याद ना करे ऐसा कैसे हो सकता है ना? आर डी बर्मन ने हिंदी फिल्म म्यूजिक को सिर्फ नए ट्यून्स नहीं दिए बल्कि एक नए साउंड और नया अंदाज दिया। इंडियन क्लासिकल और फोक के साथ जैज, रॉक और वेस्टर्न साउंड्स को मिक्स करके उन्होंने म्यूजिक में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो अपने वक्त से काफी आगे थे। लेकिन उनकी म्यूजिकल जर्नी में एक नाम जो बार बार सामने आता है वो है किशोर कुमार। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। पंचम दा की कंपोजिशंस और किशोर दा की आवाज ने मिलकर ये मोहब्बत है जिंदगी के सफर में आने वाला पल, हमें तुमसे प्यार कितना जैसे बहुत सारे एवरग्रीन सॉन्ग्स दिए हमें। आज भी इन गाने को सुनते ही लगता है जैसे वक्त थोड़ा सा पीछे चला गया हो।

दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं फिल्मी गपशप कार्यक्रम का पहला गीत तेरे नाम फिल्म से, ओ जाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दोस्तों अजय देवगन को लेकर भी कुछ नए खबरें सामने आई है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अब बड़े पर्दे के साथ टेलीविजन पर भी एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन पॉपुलर क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के नए सीजन को होस्ट करेंगे और वो अनूप सोनी को रिप्लेस करने वाली है। अजय ने रिपोर्टेडली 15 एपिसोड्स की शूटिंग भी कंप्लीट कर लिया है। शो का नया सीजन 31 अगस्त से प्रीमियर होगा, यानी अब क्राइम स्टोरी सुनाने के अंदाज में भी अजय देवगन का सिग्नेचर स्टाइल देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों सलमान खान और संजय दत्त के फैंस के लिए भी एक एक्साइटिंग अपडेट है। इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर सेवन डॉग्स अब इंडिया में 21 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंसेस में नजर आएंगे, जबकि लीड रोल्स इजिप्शियन एक्टर्स करीम अब्दुल अजीज और अहमद एस प्ले कर रहे हैं। फिल्म का मिडिल ईस्ट प्रीमियर पहले ही हो चुका है और अब इंडियन ऑडियंस को इस एक्शन पैक्ड प्रोजेक्ट का काफी बेसब्री से इंतजार है। वही दोस्तों फरहान अख्तर और रितेश सिद्वानी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने हिंदी सिनेमा में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस स्पेशल माइलस्टोन पर कंपनी ने एक्सेल ओरिजिन्स नाम का इनिशिएटिव अनाउंस किया है, जिसके तहत 30 साल से कम एज के यंग फिल्म मेकर्स को सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। दिल चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय जैसे प्रोजेक्ट्स देने वाले एक्सेल एंटरटेनमेंट का ये इनिशिएटिव नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है।

और दोस्तों इमरान हाशमी के फैंस के लिए भी एक बड़ी अपडेट आई है। आवारापन 2 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और रिलीज से सिर्फ 2 दिन पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। लेटेस्ट ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग से अब तक स्ट्रांग रिस्पॉन्स मिल रहा है और ट्रेड एस्टिमेट्स 15-20 करोड़ तक की ओपनिंग की पॉसिबिलिटी दिखा रही है। फिल्म में इमरान हाशमी और दिशा पटनी लीड रोल्स में है और डायरेक्शन नितिन ककरनी की है। सबसे बड़ा फैक्टर है 2007 की कल्ट फिल्म आवारापन की नॉस्टैल्जिया। इमरान का शिभम वाले इंटेंस अवतार और ओरिजिनल फिल्म के म्यूजिक ने फैंस के बीच सीक्वल को लेकर काफी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। और इंटरेस्टिंग बात है कि आवारापन 2 फिल्म का सनी देओल की बटवारा 1947 फिल्म के साथ इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस क्लैश हो रही है। अब देखना होगा कि ऑडियंस के लिए इमरान हाशमी का इमोशनल रोमांटिक अवतार ज्यादा पावरफुल साबित होता है या सनी देओल का पीरियड एक्शन ड्रामा।

पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: दोस्तों, चौथे सेंट्रल के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है फिल्मी गपशप कार्यक्रम में। और अब जरा नजर डालते हैं इस वक्त जो थिएटर्स में चल रही है, यानी सिनेमा घरों पर इस वक्त जो फिल्म चल रही है, और बात करते हैं उस फिल्म की जो थोड़ी हटके है और जिसका कनेक्शन है इंसान और डॉग्स के बीच का इमोशनल बॉन्ड से। बात करते हैं पंकज त्रिपाठी स्टारर ओह माय डॉग की फिल्म 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई। इसे अमित राय ने डायरेक्ट किया है, जो ओह माय गॉड 2 के डायरेक्टर भी रहे हैं। फिल्म के कास्ट में पंकज त्रिपाठी, माही राय, पवन मल्होत्रा, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, श्रीधर दुबे और विजयवीर मिश्रा जैसे एक्टर्स भी फिल्म में हैं। लेकिन फिल्म के असली स्टार है ऑस्कर और ब्रूनो, दो डॉग्स जो कहानी के सेंटर में हैं। फिल्म की शूटिंग में 250 से ज्यादा डॉग्स का भी इस्तेमाल हुआ है। और दोस्तों, अगर बिना किसी स्पॉइल के इस कहानी के बारे में थोड़ा बताऊं, तो कहानी मोमो और ऑस्कर नाम के दो डॉग्स के अराउंड घूमती है, जो जन्म के बाद अलग हो जाते हैं और बिल्कुल अलग माहौल में पलते हैं। मोमो असम में एक फैमिली का हिस्सा बनता है, जबकि ऑस्कर बिहार में प्रिंस नाम का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ रहते हैं। जब मोमो और प्रिंस दोनों मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मिसिंग हो जाते हैं, तो कहानी एक इमोशनल सर्च और मिस्ट्री का रूप ले लेती है। फिल्म में लव, लॉयल्टी, एम्पैथी और ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का कनेक्शन को बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। और बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ओह माय डॉग ने पेड रिव्यूज को मिलाकर ओपनिंग वीकेंड में लगभग 3 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है। डे वन पर कलेक्शन करीब 75 लाख रही, डे टू पर 1 करोड़ और डे थ्री पर अराउंड 1.1 से 1.2 करोड़ रहा। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिला है, लेकिन इसका रिलीज काफी लिमिटेड था और अब बटवारा 1947 और आवारापन 2 की वजह से स्क्रीन्स पर कंपटीशन और बढ़ने वाली है। ट्रेड एस्टिमेट्स के मुताबिक फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 5 से 10 करोड़ के आसपास रह सकती है। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और सुनते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से साभा। इस गाने को गाया है सुदेश भोसले, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, अमिताभ बच्चन, आदेश श्रीवास्तवा और उदित नारायण ने।
1: मैं देखता हूँ, दादी माँ मेरे साथ आइए।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉरगेट इट।

बस कीजिए, बहुत हो गया।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दोस्तों आइए अब नज़र डालते हैं ओटीटी की दुनिया पर। और ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहने वाला है, क्योंकि थिएटर्स के बाद कुछ मच अवेटेड फिल्म और पॉपुलर शोज अब ओटीटी पर अपनी जगह बनाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कॉकटेल 2 की। शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना स्टारर ये रोमांटिक ड्रामा थिएटर्स के बाद अब 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। होमी अजानिया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2012 में आए सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की कॉकटेल से इंस्पायर्ड एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। तो दोस्तों अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, रोमांस और थोड़ा इमोशनल ड्रामा पसंद है तो कॉकटेल 2 आप कल से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं संजय दत्त की आखिरी सवाल की। ये पॉलिटिकल ड्रामा एक प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और एक ऐसे सवाल की कहानी लेकर आता है जो धीरे धीरे नेशनल कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है। फिल्म में संजय दत्त के साथ नमाश्री चक्रवर्ती, अमित सद और समीरा रेड्डी नजर आते हैं। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर लायंस गेट प्ले पर 13 अगस्त यानी आज से स्ट्रीम होने वाली है। और अगर आपको रियल

डायनासोर्स में स्ट्रेटेजी, माइंड गेम्स और बिट्रेयल पसंद है तो द थिएटर थ्रेटर्स इंडिया सीजन 2 के लिए आप रेडी हो जाइए। करण जौहर एक बार फिर होस्ट और गेम मास्टर के रूप में लौट रहे हैं और इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को ट्रस्ट और बिट्रेयल के इस डेंजरस गेम में अपनी जगह बनानी होगी। सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त यानी आज से प्राइम वीडियो पर होने वाली है और नए एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होंगे। आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर अपने फिल्म को लेकर चर्चा में है और इस बार वजह है उनकी फिल्म भारत भाग्य विधाता जो अब ओटीटी पर ऑडियंस के बीच पहुंचने वाली है। 12 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई ये फिल्म 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स की एक ऐसी कहानी सामने लाती है जिसके बारे में शायद बहुत कम बात होती है। फिल्म का फोकस सिर्फ अटैकर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं बल्कि कामा और अल्बलेस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ पर है जिन्होंने उस खौफनाक रात में अपनी जान की परवाह किए बिना करीब 400 पेशेंट की हिफाजत की। कंगना फिल्म में एक नर्स का किरदार निभा रही है और उनके साथ गिरजा ओक, समिता तांबे, ऐशा दे और प्रसाद ओक जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर है मनोज तपाडिया। फिल्म की खास बात यह है कि 26/11 को सिर्फ एक टेरर अटैक के रूप में नहीं बल्कि उन आम लोगों की हिम्मत और इंसानियत की कहानी के तौर पर देखती है जो उस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता।

रेडियो अनुमान पर चलिए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर जो हमें आई है हेगरे बागरा से हमारे रेगुलर लिसनर गुमे माई बागरा जी का। गुमे जी ने आज रिक्वेस्ट करी है प्यार का साया फिल्म से तेरी दोस्ती से मिला है। इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनकर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रेडियो डिमांड के अगले मैसेज की ओर, जहां में आई है गोलाघाट आसाम से रमेश पात्रो, रुनु पात्रो और लक्की जी से। उन्होंने आज रिक्वेस्ट करी है फिल्म तिरंगा से ये आन तिरंगा है, और इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज ने। साथ ही उन्होंने इस गाने को अपने कुछ दोस्तों को डेडिकेट किया है। उनके दोस्तों का नाम है बाईकॉम, अमोल, बिमोल, देवशीष, हितेंद्र, जोगेंद्र, सोनाली और अंजलि। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोज जुड़ने के लिए मैं कहूंगी। चलिए आप सबके सुनते हैं आप सबका पसंदीदा गीत जो आज आपने रिक्वेस्ट हमें भेजी है, ये आन तिरंगा है।

जी हाँ दोस्तों, रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम। और अब वक्त है अगला मैसेज का जो हमें आई है सपोरी तेहमा जी असम से, जुनाई मेसाकी जी का। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है राजा फिल्म का नजरे मिली दिल धर का। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, साथ ही वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस गाने को सुनना चाहते हैं। बाइको मुंडा, अमोल बसुमतारी, रोमेश माइनू राभा, अंजलि बसुमतारी, हितेंद्र दास, देवाशीष हजरिका, लकी पात्रो, गागे राभा और बिमोल बसुमतारी जी के साथ। तो चलिए, आप सबकी दोस्ती के नाम पेश है ये गाना नजर मिली दिल धर का अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस से हमारे रेडियो डिमांड कार्यक्रम को इतने खूबसूरत बनाने के लिए। कल भी हमें आप सबका मैसेजेस का इंतजार रहेगा यही समय पर सुबह के 10:10 पर रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। साथ ही बता दें दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। उम्मीद करती हूं हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। और साथ ही सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पिदोले तथा तकनीकी अभियंता होलीराम वर्मा। और अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेंगे आपके अपने आरजे दंपत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक

0: से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसिलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। वे हैदराबाद हाउस में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टेन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The monsoon session of Parliament will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliament.

0: लेने और बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टेन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The monsoon session of Parliament will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliament.
2: साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत राहत फतेह अली खान के आवाज में फिल्म तेरी मेरी कहानी से। आपको बता दूं कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर। दोस्तों कार्यक्रम फिल्मी लहर में और आगे चलते हुए आपको सुना रहे हैं इसी फिल्म के गीत। गीत के बोल है दैट्स ऑल आई रियली वांटेड टू, और इस गीत का आवाज दी है शान और श्रेया घोषाल ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल की आवाज में। इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी लहर यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: Hello guys and welcome to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's set is all about emotions wrapped in atmosphere. These are songs that don't just play in the background, they create worlds. From futuristic soundscapes and haunting melodies to stories

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपके लिए हम वो गाने पेश करेंगे जो अपने आप में ही खास है, जी हाँ, पेश कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहला गीत एल्बम से और गीत के बोल है ओ सनम, और इस गीत को गाया है लकी अली ने।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है और आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में और आपके लिए पेश कर रहे हैं ब्रेक के बाद गीत शाय मोरा सैया और इस गीत का आवाज दी है मोनाली ठाकुर, पियूष मेरोलिया और मीत ब्रॉस ने।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

दोस्तों कार्यक्रम गीत माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पेश कर रहे कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म राजी से। गीत के बोल है ए वतन और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म बच से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम गीत माला में। दोस्तों आप सभी पहुंची भाइयों और बहनों को दिल से सलाम। आप अपनी जान की परवाह किए बिना देश की हिफाजत करते हैं। आपकी हिम्मत, कुर्बानी और देशभक्ति को दिल से नमन है। आप हो तो हिंदुस्तान महफूज है। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में और आगे चलते हुए आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत रंगून फिल्म से। गीत के बोल है अलविदा और इस गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की।

0: 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गीत माला में। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत निर्जा फिल्म से। गीत के बोल है जीते हैं चल, और इस गीत को आवाज दी है कविता शेख ने।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर समाप्त होते हैं और आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
3: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवी और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षताओं को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
4: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram Temple donation. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. The BJP today accused the opposition parties of ignoring issues faced by students in Punjab and Jharkhand. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the opposition parties are creating a ruckus in parliament only to avoid questions on student issues of Jharkhand and Punjab. The spokesperson also alleged that senior Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has remained silent on the Jharkhand students' issues. The Calcutta High Court has cancelled all other backward classes or OBC-A and OBC-B certificates issued under the revised rules introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. The court held that certificates issued under the earlier system have lost their validity. The OBC controversy dates back to the period after 2010, when the then Trinamool Congress government divided OBC communities into two categories, OBC-A and OBC-B. Allegations of irregularities and corruption in the issuance of OBC certificates subsequently led to legal challenges. The National Biodiversity Authority has released over 15 crore rupees in access and benefit sharing ABS proceeds from Mustard Genetic Resources. The amount will flow to 26 state biodiversity boards and 3 union territory biodiversity councils, with the ABS share calculated based on the area under mustard cultivation in each state. Minister of Foreign Affairs of Liberia, Sara Bessalobanyanti, arrived in New Delhi this morning. She is on a 2-day visit to the country. She will meet Foreign Minister Dr. S. Jayashankar during the day at Hyderabad House in the national capital. The External Affairs Ministry in a social media post said the visit provides an opportunity to further strengthen the warm and close ties between India and Liberia. In the U.S., several states are issuing special proclamations to commemorate August 15 as India Day, celebrating India's independence, rich heritage and diversity, as well as the growing contributions of the Indian American diaspora to the American fabric. Delaware is the latest state, following New York, New Jersey and Massachusetts, to issue a proclamation marking India's Independence Day. Delaware Governor Matthew Mayer signed a proclamation and urged all citizens to celebrate India Day. Pakistan Air Force carried out airstrikes in Balochistan Surab district yesterday, killing more than 30 civilians, including women and children, and injuring dozens others. In a statement, Republic of Balochistan group claimed that Pakistani Army and Air Force carried out extensive bombing and firing in civilian areas of the Gudar locality of Surab and surrounding areas, causing casualties and damage to civilian property. In Canadian Open tennis, American Brandon Nakashima defeated Spain's Rafael Jodar in the men's singles semifinals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. At the stock market, the Sensex was trading on a subdued note, while the Nifty was moderately lower in the afternoon session today. And with that, we end this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी,
0: ईटानगर।
1: नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम,
0: सब
1: राज
0: कुछ
1: भैया। अरे
0: जी।
1: क्या बोले, मतलब कि को इंसिडेंट हो गया है
0: अच्छा
1: ना,
0: जी।
1: और सावन महीना के आज चौथा सितंबर है ना, तो
0: जी
1: इस सितंबर में हम पूजा पाठ कर रहे हैं,
0: अच्छा
1: और
0: जी।
1: पूजा पाठ के समागम थोड़ा कम हुए। मैं ट्राई कर रहा था
0: अच्छा
1: मेरे दोस्त के नंबर पे, तो
0: जी।
1: क्या हुआ, महाशिव जो है, बाबा जो है, और श्री कालेश्वर बाबा ने मेरा फरमाइश पूरा किया,
0: जी
1: आपसे
0: उनकी
1: मेरा बातचीत कराई दिया
0: जी
1: है ना।
0: उनकी कृपा से आपका फोन लग गया
1: जी,
0: जी।
1: तो
0: हाँ जी
1: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी हाँ
1: मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, और क्या बोले,
0: आसाम से
1: स्टेट
0: ताल्लुक
1: है
0: रखते
1: आसाम।
0: हैं जी
1: तो पहले हमारे दोस्त को बहुत धन्यवाद,
0: जी
1: और शिव के अपार आशीर्वाद आपके पर, हमारे सुता भाई बहन के पर वर्षित हो, ये
0: जी
1: मेरा कामना है।
0: जी हम सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी दुआ है
1: जी,
0: जी।
1: तो একটা বাংলায় কথা বলি,
0: হ্যাঁ বলেন দাদা।
1: আমি জানি আপনি বাংলা সুন্দর বলতে পারেন অবশ্যই। তো
0: হ্যাঁ
1: চাহিদারা এত বেড়ে চলে, যেন ইলেকট্রিকের বিল, হিসেবি জীবনে হিসেবের খাতা পড়ে থাকে গরমিল, ভালো থাকাদের অঙ্ক মেলাতে হয়ে গেছি ভাগ শেষ, কেউ প্রশ্ন করলে ঘাড় নেড়বুলি, এই ভালো আছি বেশ, তাই না?
0: হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো
1: আমি
0: জি।
1: জানি আমার বন্ধু বুঝতে একেবারে আগে বুঝতে পেরেছেন।
0: হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ একটু একটু বুঝছি। ওকে
1: আর তো বাকি আপ ঠিকঠাক হে
0: জি বিলকুল।
1: আমারে দোস্ত, ঠিক
0: জি
1: না?
0: জি মে বিলকুল
1: আর
0: ঠিকঠাক হুম।
1: তো এক বাত কহো, আপকো
0: হ্যাঁ জি
1: আঁসু বহে তো এহসাস হোতা হে, দোস্তি কে বিনা জীবন কিতনা উদাস হোতা হে না?
0: ক্যা বাত হ্যায়।
1: উম্র হো আপকি চাঁদ জিতনি লম্বি, আপ জেসা দোস্ত কাহাঁ হর কিসি কে পাস হোতা
0: क्या बात
1: है
0: है
1: ना।
0: क्या बात है जी। अनुपदा बहुत ही बढ़िया बात कही आपने
1: जी,
0: जी।
1: और आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ, फिल्म का नाम तो पता नहीं
0: जी कोई
1: लेकिन
0: बात
1: गाने
0: नहीं।
1: का बोले ऐसे है,
0: हाँ जी
1: दो एक कम दो दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार, ऐसे करके गाने हैं।
0: ओके जी। हाँ जी
1: और कुछ दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी
1: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जिसका नाम है प्रेमजीत चक्रवर्ती, वो तो आपसे बंगाली में बात करते हैं, कभी कभी
0: जी जी
1: असमी से बात करते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी हाँ जी बिल्कुल
1: जी,
0: जी।
1: और हमारे अविनाश भाई के लिए, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, अमर सिंह साहू जी, और श्रीकांत जोशी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, और हमारे लंगोटिया दोस्त थे उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है
0: लोकेंद्र
1: लोकेंद्र वर्मा
0: वर्मा
1: जी।
0: जी।
1: जी, और ढेर सारे श्रोता, ओहो एकदम भूल गया, हमारे छोटे भाई देवजीत दास और बापन आचार्य जी के लिए। तो चलिए बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ, बहरहाल आप अच्छे रहिए हमारे दोस्त, और शिव जी का आशीर्वाद
0: हम
1: सदा
0: सभी के साथ
1: वर्षित
0: बना
1: हो
0: रहे
1: आपके
0: हैं
1: पर, हमारे
0: जी।
1: श्रोता भाई बहन पर।
0: ओके अनुपदा कॉल
1: ओके
0: करने
1: ओके,
0: बहुत बहुत
1: थैंक
0: हम
1: यू
0: आपको
1: भाई।
0: आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: थोड़ा थोड़ा दे

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश।
1: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करने का आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला।
0: जी चलिए, कोई बात नहीं, आपने बहुत दिनों के बाद ही सही हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी संगीता देवनाथ जी, सही में आपने बहुत दिनों के बाद कॉल किया हमें। जी और
1: सर, आप कैसे हो सर?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है?
1: जी, मैं भी अच्छी हूँ और मेरा परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे।
0: जी हमेशा आप सभी ऐसा ही खुश रहे, अच्छा रहे, हम यही भोलेनाथ से दुआ करते हैं। जी
1: सर, मुझे आज एक गाना सुनना है। फिल्म का नाम है जुर्माना और गाने का बोल है सावन की झूले पड़े।
0: ओके। हाँ जी जरूर सुनाएंगे, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: जी, पहले सर आपको
0: थैंक यू। हाँ जी
1: और अविनाश भैया, देवजी चक्रवर्ती जी और मेरा हस्बैंड आशुतोष जी, भगवान भैया, केसरी भैया और जितने भी अभी सुन रही है सबको लेके सुन
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। जी तो संगीता जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आगे भी कॉल करते रहेगा।
1: रहे।
0: जी ओके।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, गांव अकबरपुर तहसील सुरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: जी हारून साहब, काफी दिनों के बाद आपने कॉल किया।
1: जी क्या है, दूसरों को भी मौका भी देना पड़ता है ना।
0: क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने जी। और सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आपके मिजाज कैसे हैं?
0: जी हमारा मिजाज बहुत ही बेहतरीन है।
1: और आपके इधर बारिश कैसी हो रही है ईटानगर में?
0: जी बारिश हाँ लगातार हो रही, लेकिन अभी फिलहाल तो धूप खिला हुआ है, रात को बारिश हुई थी।
1: जी।
0: और आपके वहाँ का मौसम का मिजाज कैसा है?
1: बस हमारे इधर से भी एक दो दिन से बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तब तो बहुत ही बढ़िया मौसम होगा
1: जी, मौसम अच्छा है, लेकिन 10 रोज से बारिश नहीं हो रही थी, अब लेकिन कल परसों से बारिश हो रही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी
1: जी
0: जी तो इसे बढ़िया मौसम में हरुण साहब कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है गोपी के चंद।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोलना है छतरी ना खोल बरसात।
0: ओके जी, हाँ जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आप हैं पुरुषोत्तम कुमार हैं, राकेश हैं, रोकित वर्मा हैं, मांगीलाल हैं, गजरा रोधी हैं, भगवान सिंह परमार सिंह हैं, और जो श्रोता सुन रहे हैं ईटानगर में, सभी के लिए रहेगा।
0: ओके, तो हरुण साहब इसी तरह से हमसे जुड़ते

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मानवर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा
0: प्रसाद
1: सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी शारदा प्रसाद जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप? आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करके बहुत ही सुखद अनुभूत करता हूँ। और आकाशवाणी ईटानगर से जब मेरा फोन लगता है और आदरणीय वाग्रा साहब से वार्तालाप होती है तो फिर दिल तो बाग बाग हो जाता है। मथुरा वृंदावन में तो इस वक्त चमचमाती हुई धूप है और गर्म वातावरण है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है।
0: नहीं।
1: और अगर कल परसों हुई थी थोड़े से छिटपिट मतलब बौछारें पड़ी थी, लेकिन धरती अच्छी गीली नहीं हुई थी।
0: अच्छा, जो बारिश आप लोगों को चाहिए था वो अभी तक हुई नहीं?
1: जी नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये सावन का महीना है, ऐसा लगता है कि ये बैसाख का महीना आ गया है।
0: ओहो जी, आशा करते हैं जल्दी आपके वहाँ झमाझम बारिश हो।
1: जी जी, स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।
0: जी
1: और हम तो इंतजार कर रहे हैं बारिश का कि आ जाए और झमाझम बारिश हो जाए, धरती ठंडी हो जाए, वातावरण ठंडा हो जाए।
0: जी बिल्कुल, इंतजार का फल मीठा होता है और वो मीठा फल जल्दी आए, हम यही दुआ करते हैं।
1: बस हम भी यही अपेक्षा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवों के देव महादेव से, कि सावन के महीने में कम से कम गंगा मैया की तरह यहाँ भी लहरें उठें और झमाझम बारिश हो और हम बारिश से इस तरह बोर हो जाएं, आनंद की अनुभूत करें।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, तो जल्दी बारिश हो हम यही दुआ करते हैं। और कहिए, आज हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाएं शारदा प्रसाद जी?
1: सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी ईटानगर को और सभी श्रोताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारा स्वाधीनता स्वतंत्रता अमर रहे और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक बने रहें, यही शुभकामना करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और अब आपकी
1: आज
0: फरमाइश।
1: अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है परदेश, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये गीत सुना दीजिए समूह स्वर में। कई गायकों ने की आवाज इसमें सुनाई पड़ती
0: जी
1: है।
0: जी जी, हाँ
1: और
0: जी, हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: ही प्यारा खूबसूरत गीत है, देशभक्ति से ओतप्रोत है।
0: बिल्कुल, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस देशभक्ति गीत को?
1: सर्वप्रथम मैं याद करना चाहता हूँ आरणी वोके वाग्रा साहब को, ईटानगर से हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी हैं, राजू यादव जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी, पुष्कर नाथ जी और पूरन वर्मा जी हैं, साथ में अविनाश आशुतोष संगीता जी, अर्जुन प्रधान जी हैं, साथ में केशव प्रसाद शर्मा को भी याद करता हूँ, गंगाधर श्यावनकर हैं। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर सुनने वाले सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी कॉल करने के लिए। तो हम आपको और आपके सभी साथियों को आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं
1: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: जी सा नमस्ते, मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: जी सा कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सुनाइए।
1: जी सा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सर बिल्कुल वहाँ का मौसम कैसा है? जी
0: हाँ, रात को तो बारिश हो रहा था लेकिन अभी धूप खिला हुआ है।
1: जी हमारा यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रहा है यार।
0: अच्छा, अभी बारिश बंद हो गया था।
1: हाँ बारिश बंद हो गया।
0: ओके ओके जी, चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ ही दिनों के बाद तो ठंडा महीना आ जाएगा।
1: जी।
0: हाँ जी, तो आप अपना परिचय दे दीजिए।
1: जी सर मैं हरद्वारा बात कर रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुर असम से।
0: जी हरद्वारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और आप बहुत ही अच्छा हिंदी बोलते हैं।
1: जी जी सर।

0: जी
1: थोड़ा थोड़ा बात करना सीखता हूँ।
0: जी सीखना चाहिए जरूर, और आकाशवाणी से बात करने से आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा, है कि नहीं?
1: जी सर, और सर आपने भी इतना आसामी अच्छा से बोलता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, जी, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, असमिया, बंगाली, नेपाली, ये सब भाषा में थोड़ा
1: जी।
0: थोड़ा बोलता हूँ जी। तो हरिद्वारा जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सर LOC कारगिल फिल्म से कोई भी गाना बजा दीजिए। जी
0: LOC कारगिल फिल्म से ना?
1: जी जी
0: ओके, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सबसे पहले तो आपको सुनाऊंगी मैं ये गीत,
0: ओके, थैंक यू। हाँ जी,
1: और मेरे साथ ये गीत सुनेगा भाईकन मुंडा, अमल बसुमतारी, रमेश पात्र, दिनेश शर्मा, निरुपल दोरा, मंटू बड़ुआ, सम्पी दत्त, देव दत्त, और हेलो फरमाइश से जुड़े रहे सभी सदा के लिए दिव्य रहेगा।
0: ओके। तो हरिद्वारा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और आपके सभी साथियों को आपके पसंद का गाना सुनाएंगे।
1: जी सर, थैंक यू।
0: ओके, थैंक यू।

0: हेलो, फरमाइश
1: सर जी, जय श्री महाकाल।
0: जी। जय श्री महाकाल
1: सर जी, आपका नियमित श्रोता शिवा लोहट एमपी विदिशा से। सर जी,
0: जी। शिवा लोहट जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: सर जी, बहुत बढ़िया, बारिश हो रही है और बेहतरीन आपसे बातचीत चल रही है, काफी अच्छा लग रहा है सर।
0: ओके, बारिश का मौसम, झमाझम बारिश, और उसके
1: जी
0: ऊपर
1: सर,
0: आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश में आपका कॉल लगा।
1: जी सर।
0: जी बहुत ही बढ़िया। और अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप, घर से या फिर कहीं और हैं?
1: सर जी, मैं घर पे ही हूँ, अभी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जी
0: अच्छा, कहीं निकलना मुश्किल है अभी?
1: जी अभी
0: अच्छा
1: निकलना
0: अच्छा
1: मुश्किल है सर जी।
0: चलिए, आपने आपका कॉल ईटानगर में लग गया, और इसके बाद फिर किसी और स्टेशन में आप ट्राई कीजिए।
1: जी,
0: जी
1: बिल्कुल सर, वो तो लगे,
0: जी
1: यही जहाँ जहाँ का समय होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: शिवाजी, आज ईटानगर से कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सर जी, पहले तो मैं सभी जवानों को नमन करता हूँ।

0: सम्मान से हम लहराते हैं उसी सम्मान से हमें उतारना भी चाहिए सर। और गाने के बोल रहेंगे सर, लेके आई है हवाएं ये सारा, चलिए बे वतन मेरे यारा, ये दीवार रीमेक का गाना है सर।
1: अच्छा, और किन साथियों को आप सुनाना चाहेंगे इन गीतों को?
0: सर जी हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, भदरुआ से रहेंगे पुरुषोत्तम कुमार जी, शारदा प्रसाद जी, उस्मान अली जी, और हमारे मित्र रहेंगे अमल जी, विमल जी, रमेश पात्रे जी, रमेश प्रजापति जी, अविनाश जी, और तमाम जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और साथ ही साथ सभी शहीदों को, सभी जवानों को जिनकी वजह से हम आज स्वस्थ और बढ़िया महफूज रह पाते हैं, जिनके मारे हम सभी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, उन जवानों को समर्पण रहेगा
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा लोहट जी कॉल करने के लिए, और आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुना रहे हैं।

आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपुर, डिस्ट्रिक्ट एकाचार, आसाम से।
0: जी, असम से देवजीत दा। और कैसे हो देवजीत दा?
1: बहुत बढ़िया हो, आप
0: बढ़िया
1: कैसे?
0: हो? जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जी
1: আর আপনাদের ওখানে আজকে আবহাওয়াটা কেমন হচ্ছে?
0: এখানে রাত্রেবেলা বৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু এখন ধূপ খিলতে আছে।
1: না,
0: জি
1: আমাদের ওখানে আজকে অনেক গরম হচ্ছে লাগছে।
0: গরম না?
1: হ্যাঁ, তো আমি আজ গানা শোনাতে চাও।
0: জি দেবজিৎ দা,
1: ফিল্মটার নাম আশিকি।
0: আশিকি। হুম হুম
1: গানাটা বলে, শাশু কি জরুরত ইস দেশে।
0: হুম ওকে,
1: মে কুছ দো লাইন মে আপকো সুনাউঙ্গা।
0: জি জি বিলকুল।
1: দিল কে পাশ আপকা ঘর বনা লিয়া, খাবো মে আপকো বসা লিয়া, মত পুছো কিতনা চাহতে, হার সবকো আচ্ছা বনা লিয়া।
0: ক্যা বাত হ্যায়। জি
1: তো মে মে তো আজ বহুত হি আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় আপকে সাথ বাতে হুয়া।
0: জি বহুত হি আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় হামে ভি। और देवजीत दा, इस गीत को किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: पहले मेरा ये गीत मेरे परिवार में सुनेगा। मेरा पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और माताजी है शिल्पी रानी दास बरगैया जोजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी। और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: मेरे आसाम से है, मेरे बड़े भाई है अनु कुमार भट्टाचार्य, और दीदी है छोटोबा भट्टाचार्य जी, और रामतो भाई, और बापन दादा है प्रेमजी दादा, और दादा है राजा मलकार, दादा है जवाहरलाल बनमो। और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते हैं, सारे श्रोताओं के लिए गाना डेडिकेट करूंगा।
0: ओके।
1: और मैं तो आसाम में व्यस्तता हूँ, इसलिए मैं काफी दिनों के बाद आपसे बातें हो रहा है।
0: अच्छा, जी जी जी जी। तो देवजीत दा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced level 2 ADAS? Yes. Smart power tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है. आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं एक बेहतरीन फिल्मी सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक और ये के बोल हैं उफ तेरी अदा और इस गीत को आवाज दी है अलीसा मेंडोंसा और शंकर महादेवन ने.

0: पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
1: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
2: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
3: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। ये हम सब के लिए खेद का विषय।

कोयला और खान मंत्री, खनिज विकास एवं विनियमन 1957 में शोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न

0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुग ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बरेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा

0: करना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
5: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण न कर सके और फिर व्यक्त न कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
6: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमरीकी ताने बाने में भारतीय अमरीकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण FM है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्त प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों 90s के गाने सीधे दिल पे लगते हैं। जी हाँ, अगर 90s की बात करें तो 90s के गीत सिंपल लिरिक्स और गहरे एहसास से जुड़ी हुई होती है, ना ज्यादा शोर ना हैवी वर्ड्स। दोस्तों 90s के कलाकारों की आवाजों का मिलन आज भी जिंदा है, जैसे कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति। ऐसी आवाजें जो टाइम के साथ पुरानी नहीं बल्कि और गहरी लगती है। जी हाँ, इसी के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत कुमार शानू की आवाज में, एक लड़की को देखा था, और फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

दोस्तों ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी और इसका डायरेक्शन विधु विनोद चोपड़ा ने किया था। फिल्म की स्टोरी 1942 के ब्रिटिश इंडिया के बैकग्राउंड में सेट है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है अनिल कपूर और मनीषा कोइराला। दोस्तों फिल्म का म्यूजिक आदि बर्मन ने दिया था, जो उनके करियर के आखिरी बड़े म्यूजिकल वर्क में से एक था। फिल्म की फोटोग्राफी, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स और 1940s का एटमोसफियर बहुत खूबसूरत है। इस फिल्म की सबसे खास बात है कि रोमांटिक लव स्टोरी को देश के आजादी के संघर्ष के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन भी मिला था और आज भी इसे हिंदी सिनेमा की यादगार रोमांटिक फिल्म्स में गिना जाता है। तो पेश कर रहे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए गीत इस फिल्म की 1942 अ लव स्टोरी से। गीत के बोल है रूथ ना जाना और इस गीत को गाया है कुमार शानू ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आपको बता दो कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में और हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
2: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km.

0: per liter in petrol and 25.51 kilometer per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to rupees 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में. और कार्यक्रम में चलिए अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत सिर्फ तुम फिल्म से. गीत के बोल है पंची सुर में गाते हैं और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने.

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत उदित नारायण की आवाज में फिल्म सिर्फ तुम से। आपको बता दूं कि इसी के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यहीं पर समाप्त होते हैं।

0: Voilà, tu prends un somme le commande qui l'a consommé maintenant pour la bâtisse, ça me la fout naïe.
1: नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ मीडियम वेव्स सी पाक सी सिप सी चुमसी मीटर्स हो पाक चित सिप हा किलो हर्ट्स में नहीं चला खाम ते खमती हाउ ने को मायो मने वन क्या सिप दे लंगनी पीते सोंग हेंग पाक साउ तो नहीं इंग्नाजी पी में सोंग हेंग साउ हो नून अगस्त नहीं सिप सांग वन कौ खाम लुक नांग प्रिया लोंग फोय में हने थोम दिखा Chief Minister Hichi Pema Khandu wan manga an pun ka ne mai kham an pin gan su man hime an meung Arunachal Pradesh tai khang meung Assam border mai au si tang loi apsu khansam representative khong Galo Welfare Society Galo Students Union khansam Dolok Bango Welfare Society mun kham gan kayo มันเจ้าใครมาไหนข้ามอันแค้นเรื่องอาแขกไหนก็จำเอาเย็นกันเอาเป็นเข้มซาเนื้อซ้อมเมืองในน้ำหอสติ๊กส์โฮลเดอร์ตั้งไลน์นะไหมหังจะเอาเมนเทนพีซขันซำเอาเป็นกันมิวชัลทรัสต์ไหนมันเจ้ามิสเตอร์คันดูเอนเกจเฮอร์กานิซีเราใครมาเยาอังเก้าขันซำHome and Border Affairs Minister Hichi Mama Natung Nai Kacham. Hapin Pis Wung Kang Som Meung Ne Mai Khen Si Hong Kan Kayao. Wan Talang Na An Poon Ka Ne Mai Kun Kilai An Mai Mu Nan Gan Ne Mai Wung Kang Kun Sim Meung Assam Kha Arunachal Pradesh Mai Neati Ming Mang Basti Tang Lui Assam Arunachal Pradesh border pachip kanka nisi nei hukan ma kayo Hikchi Hemanta Biswa Sarma CM Hong Meung Assam khau Kun Singh Meung Assam Khansam Arunachal Pradesh mai mue khup kan si April hit cha peace khansam harmony nei hanai open hanam ho Social media post mai manchau CM Hemanta Biswa Sarma wa nai som meung nai kacham luk meun nen bun tong tra au ni nam nam hum hit te ko kan ma ka nam ho luk kilai khu kon sim meung hau nai hum kan si pin te ko pinong mau pinong sau si u gan ma nam ho ngay ke som meung mai man ha sip song an nei nam hang gan su chau wong khau au ni au nam si ane ko mun kham gan ti au sang gan nei si Assam CM khai ma ka nam ho President Draupadi Murmu nei kacham an sangit natak academy fellowships Khansam Awards Chapi Song Hing Sao Si Khansam Song Hing Sao Ha Nai Park Sipha Artist Me Special Investiture Ceremony Niati New Delhi Nai Pekan Pekan Hama Kayo Award Nai Hang Cha Au Recognize Au Mat Yam Outstanding Khansam Sustained Contribution Hang Cha India's Performing Arts covering music, dance, ang ka, ang map, ang theater, folk and tribal arts, puppetry, traditional theater, nai khau nam ho. Luk meung Arunachal Pradesh hau nai mai. Hichi Domin Karbak nai mai. Sangit Natak Academy Award cha preservation khansam. Promotion and Indigenous Culture Heritage Khansam Traditional Art Form Mai Neima Kayo Angkau Hikchi Rumi Taki Neimai Award Ustad Bismillah Khan युवा पुरस्कार चा फोक थिएटर खंसम ट्रेडिशनल फोक डांस अनका अम्मे मई नैमा कानम हो पार्लियामेंट नै कचम माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल सोंगहिंग साउ होक नै तंग राज्यसभा मई वन मंगा मई सफो हमा कायौ नै के पार्लियामेंट नै कचम नेशनल कोऑपरेटिव बिल सोंगहिंग साउ होक तंग लुई राज्यसभा नै वन मंगा मई सफो हमा कायौ लोकसभा को बिल नै लुकना पुन सफो हमा कायौ लेजिस्लेशन को स्टेट गवर्नमेंट नै हंचा फंडिंग लुकन पा कॉर्पोरेशन लाइक एन एंटिटी एंगेज एन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट हंचा खंदानु नमै हनै लोंगकनसी एक्सटेंड सफो हमा कायौ कचम कॉर्पोरेशन नै को लोन नै कोऑपरेटिव सोसाइटी अंकौ मचल के एंटिटी एंगेज एन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट मै हपिन यौ निसी लौखै मा कायौ रिवाच सेंटर लुई कुप्तंग तनिन सुपम दुकुम खौ प्रोग्राम पोंग लुई प्रमोशन एंड revitalization of apatani language mai ausi niyatiman taso lapang hari 015 anpun ka angka namai head organize kan kayo cbsc khau sip song tan supplementary examination pimu song hing sau ho results nai announce head kan hama kayo มือในหังจะแลม results ในกระจำ results.digilocal.gov.in เว็บไซต์ใหม่ค่าซิแลมกันเป็นมากายว BCCI ขันสำอัฟกานิสถานคริกเก็ตบอร์ดเขาเราใครมาในมือใน3 match T20 International Series ในเมืองอินเดียเขาใหม่เมืองอัฟกานิสถานเขาดึกฮิตโฮสกันมาเยาตู้เลนในกระจำลุกเนินอันดึกมาลุก13วันตึกหาทิ้ง17วันเนียตีอารุณเจตลีคริกเก็ตสเตเดียมไม่ตักเอาแลมกันมากายเยาขั้นสำจะห้างมาในเก่าถึกข้ามดึกไข่นายน้ำหอมาในโอ้ยข้ามไหมไซเลนมุงคมไหมฮันในทอมติขา

0: हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त अपराह्न के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं उद्घोषिका तय कामयर आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूँ। रोजाना की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। आज की हमारी तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए
1: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मिश्मी कमांड और तैकमती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और इस सेगमेंट पर आपके लिए हम पेश करेंगे गीत वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से। गीत के बोल हैं आई एम इन लव, और इस गीत को आवाज दी है के प्रीतम और डोमिनिक ने।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि आगस्ले नि बन आजम तारिक बृहस्पतिवार ई पोहन सोंग आजम बाजी पुनी मिनट मुख्य विषम लकम वांचो साइका पा कपे पोंग का हवा पाई फाले वांग का वांगसु आसम या अरुणाचल प्रदेश नि लोंगजी पोंग टोक्या हिमे नोकमा ले एन के हुमबर नि आसम या अरुणाचल खनकनु बा मा हासल लोंगजी हु मा मुकुमो फेरसी ngai dong ke phai ma missing li kan khanaknu angkya tmpk hotam a arunachal handan jang to khang a gari ghora pho arunachal hanap jang to kawang ang chitam le lama sai sen le economic block at tham le tai le haja ba ma asam chief minister hemant biswa sharma at ta social media ka ho ma asam ya arunachal ni jo khanaknu ang ste ni ba ma kya homo kho sat hi ya tu melam kho zu zingle amai le tham hai ऑल वन एंड टोले स्टेट नि खनक नुबा मा आमी पुआपा सन वन तोखंग ए जो तयनो हमै जंगमाले अमोकसा लंगोले बंग पुजो बोमा हाया होजु हासलोंगजी फैजु आचोंग के होली चंगतै पुले वनले चीफ मिनिस्टर शर्मा ए हाया बोमा लेन के तबिकु जंग पुबा मा स्टेट नि गवर्नमेंट ए स्टेट नि बामा के सल्लुइ चेन हासलोंगजी तोयतै जंग वन काजे मखंग ए हामे जंग मा लजिंगे जौले अमाइद पुबो महाजे फैमा माफन मावन स्वक्या हक पुनि बन आनि तिंग नो खों वै ताइपु बो मा स्टेट नि गवर्नमेंट ए हजा चु हले हामे जंग मा ले वै फन वन ले ला अंग तुम ता मोकसा लंगो ताइपु ले चु वन ले हजा बामा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए चु आसम चीफ मिनिस्टर ए वनजे क्या हजा का अंग उपो चांगपु ला अचोक सनन तो ले हालक्या का अंगौ होन्यनंग जांगमन काजे होलम मखंग ए हा मैजंग मल फनवन ले ला हम अंक्या मोट ले वनसेले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ए अनि न्यू दिल्ली मा अंगोत असो केता स्पेशल इन्वेस्टिचर सेरेमोनी तु सो मा मिहक हो तबन आगा आर्टिस्ट थम अंग 2024 हिया 2025 जांगपुंग सेन संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप सिया अवार्ड्स कोतुनले बोमा हजा एवर्ट सायशुन थिएटर फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स पपेटरी हिया ट्रेडिशनल थिएटर निंग्या इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स फो मा अथकले स्वकमान क्या मी अंग कोतुन जाइले कहोमा अजय मजबा मा अरुणाचल प्रदेश मुखंग ए चु हजा एवर्ट डोमिन कार्बक ए संगीत नाटक एकेडमी एवर्ट बोमा रूमी ताकी ए उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार ले कपलो ले राज्यसभा तुसो अनि अप्रूवल कोला अशोक ले पार्लियामेंट ए माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 बिल अनि पास दुआ कहोमा अजंग बाजा बिल देशमा क्रिटिकल मिनरल्स डिमांड लोय अंसले ngote kya za lalle swakpuku ma india mining sector homok ho hosat tantai la achan amai angkya hanpak ma zi le zingejau kya bil changtai le पार्लियामेंट तुसो आजा बो मा राज्यसभा ए मनी अप्रूवल को ले नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल चु मनी पास दुआ बो मा लोकसभा मा हजा बिल थो तो पास दो पुजो चांगले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई थम ए 2026 जंगपुंग अंक्या क्लास बन आनी लाइन नो सम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन परीक्षा रिजल्ट अलाइले फाडुआ लानुनसम आजा रिजल्ट डीजी लॉकर रिजल्ट्स पोर्टल मा रिजल्ट्स डॉट डीजी लॉकर डॉट गॉफ डॉट इन मा हुले सिंगवान स्वागत अरुणाचल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन ए अनि नामसाई डिस्ट्रिक्ट नोंगटाउ होनोई मा

0: Several languages, RCML, hotam e, tani supun dukun hotam pai, asamatham ankya e, mani, jiro hari nok makya, taso lapang honui ma, promotion and revitalization of apatani language, man ma, apatani kaangau, sesan letham anke zoom keta, outreach program tu so angot asole. Haja mama RCML center head, Dr. Mechek Sampar E. Tabi jo mamu mamu li kan zangman kaze hiya cultural homokhosat walam phaikya Arunachal Pradesh ningkya state khanak nu e halakya ma zangman kaze hiya cultural heritage session le tham ang khala jo mokosa azong mong kya mot le vanazele tawang honoi ma ani har ghar tiranga pon poman ma chamlang tawang monastery makhang e Tawang War Memorial Cup le ahamatai le ta tiranga bike and cycle yatra song le kahoma ajang bahaya bo ma tawang township ma pangnu honoi to wai ani honoi public kharak nu jau e hai angke independence day pon pon thoma ang town ha kha ting jong pho hunjang le asika chau ang ta swastha abhiyan mochu mokosa le kaho ivei Ija Akashvani.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का समाचार वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडिया वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात दोस्तों प्रस्तुत है आपके लिए हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं बाहुबली 2 से गीत गीत के बोल है सौजा जरा और इस गीत को आवाज दी है मधुश्री ने

दोस्तों, इस गीत के बाद अब आपके लिए पेश कर रहे हैं आवारा फन फन से गीत। गीत के बोल है तेरा मेरा और इस गीत को गाया है मुस्तफा जाहिद और प्रीतम ने।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे में श्रोताओं का समाचार।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे वांछा श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सुन पाएंगे इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर पुयालापुची जिहोलोसो बुरुलिनी एतानिची इदुमिश्मी आहोला केजी दारगालंबो इनु एजा गाया निहो कापया निहो मंगा माचे नुगेबाने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में ओना मैं दिल्ली माने भोग आशे नामाचे आहोएगा माओ होलमा इमोल नंबर संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप दोने अवार्ड अपिया बदा आहोगा अरुणाचल प्रदेश मचे ट्राइबल मुचे आशे ना दोने एकिशा प्रोग्राम मा आहोएगा डोमिन कारवाक है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड हंगा बमहो रोमी ताकिया है भोग आशे नागेबाने उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार हंगा बदा आहोगा आसाम ने अरुणाचल प्रदेश माचे इमु में खो नोंगा जहां दागे ने जियम भोजी ना ने आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा में लगादा आहोगा आचाम बयागे मा अरुणाचल प्रदेश ने आसाम में आतिपाही उखो प्राने थोपगा आइदो ने एकिशा रुगामी एको बखागान दो लापुगा लदा ने शर्मा में लगाने आतिपाही दोला प्राने पाहे थुलागा लामा हो आतिपु मगा हो कानी मचा में पाहे थुला जिमी खगादा लगादा आहोगा आसाम चीफ मिनिस्टर में अली लगा चा है आर प्रविदा ने चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू में लगाने आजीजी एल ने थोपों दो बुई चिचा गे मने लाखुआ जिगाई दा लगादा आहोगा आहा असोली निमाचिनी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हिमी आतिको ने आतिका निमाचिमु में हुंगापा भुनी ने टीएनपी के में अरुणाचल प्रदेश बाचे एम ए पगाम बाचिदा लगा लिखी माने अमर कहा ही लाओ पूछे मिनरल्स दोने माइंस बिल एजर कहना अन्य होता हो ओना राज्यसभा में पास ला बमा हो अमर कहा खागा अतिकाची लिखी काजे के नैन चौने वे आ बिल है लोकसभा में आज पूछी का बीच जागे ने बुनी पास ला बता आहोगा आमहो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल बु लोकसभा ने राज्यसभा का निहान ने पास का बता आहोगा आ बिल को कमाने स्टेट अनंब्रो में कोऑपरेटिव सोसाइटी अनंब्रो आमे तांगा जिगा होता ला होगा नेतानो के बने सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जाम मच रिजल्ट योगे बने एग्जाम जुया में रिजल्ट डॉट डिजी लॉकर डॉट गोव डॉट इन मा बाला ने अतु जिगा होता ला होगा नामसाई माचे नांगताओ आतिको महाबोधि स्किल डेवलपमेंट सेंटर आजिगा मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन में ओना अतो इबाने आ सेंटर को कमा बिहार तो ने माओ यूपीट यू लॉर्ड बुडाची एप्रो अदगा उदा ला होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर में आ सेंटर माने ताइखामती इमुची कल्चर यचू बुनी जिगा उदा ला उगा आहोगा नामसाई महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज मा माओ मोंग इमो नंबरो जी खेवे हॉस्टल ओगे आजिगा माओ भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर में अथु ओग बदा आहोगा रिवाज में तानी सुपुन दुकुंगो आरोगा गने आपतानी को बथो रो चिपुआ बुनी निगा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो हरि आतिकोची तासो लापंग मने प्रोग्राम अखानेगा लदा ला होगा आर सी एम एल हेतानेगा डॉक्टर मेचेक संपर अवन में आ प्रोग्राम माचे चाहे बने अरुणाचल प्रदेश माच इमु में बहा आयुठी सिखो ने इन गाजा एको बुथो दो ने कल्चर ये चुबुए अरुण दगादा लाय बदा आहोगा ओ को खे इंडिया माच आसला ट्रुजी ना लाने कैंपेन चिगा को को माने बाइक दो ने साइकिल रैली गे तवांग मोनेस्ट्री माने तवांग वार मेमोरियल चिंगबु दो ने मार्केट मा लिबा ठुतेगा लादा ला होगा अफगानिस्तान में मैं दिल्ली माचे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम मने क्रिकेट टूर्नामेंट दे अखने गाना होता लाने बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अमरवाती का बदा आहोगा अली अमरवाती लाखों को मने अफगानिस्तान ने इंडिया बगाचे मैच के अब चला पूछे जो होशो मचिन ने जिहु रु मचिन लिबा मैच का सो अखगाव दा ला होगा अबुन्याना अरच प्रिस मचे इज कमिंग पपुम परे लेपरा दा दिवांग वैली चांगलांग तिराप तने लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट मचे आतिका ब्राइमा ना

0: ayo bara bodo ne aboriginal shada ne itanber meteorological center ma chime la hoga ne lower subansri ne namsai district ma buina pra ayo shada la hoga etanchi idumismi aho alima on dobae
1: echa akaswani itanagar dibugor nale idmismi program ma echanta ashe ahonso khyama ho etani hendo
2: rumi misune ani mena chi cha shi chi ahonji
3: दोस्तों भी आप सुन रहे थे तुम इसमें श्रोताओं का समाचार ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और इस सेगमेंट पर आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म दावत ए इश्क से। गीत के बोल है शायराना और इस गीत को आवाज दी है सलमानी ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब आपके लिए पेश कर रहे हैं लुटेरा फिल्म से गीत। गीत के बोल है मोंटारे और इस गीत को गाया है अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य ने।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारी दूसरी प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे थमसा श्रोताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे मंजू जी। दोस्तों हमारे इससे दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक कहिर अत तथा तकनीकी अभियंता विश्वजीत और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। और हाँ, थैंक यू सो मच दांपक जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। दोस्तों, जो है उसी में संतोष रहना सीख लीजिए, सुकून खुद ब खुद मिल जाएगी। नमस्कार, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। और हाँ, इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता ताना आतुम, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। तो दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम आपका भरपूर मनोरंजन कर सके एक से बढ़कर एक गीतों के माध्यम से। जी हाँ, हमेशा चुन चुन कर लाते हैं एक से बढ़कर एक मजेदार गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इसी मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं इस वक्त गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Good evening, Itanagar.

हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ कुछ अच्छी और जानकारीदायक बातें भी होंगी आपके साथ। पीली बस में बैठकर सपनों की राह निकलती है, नन्हे कदमों की हंसी से हर सुबह सवरती है, ज्ञान की ओर बढ़ते बच्चे, खुशियों का है ये सफर। स्कूल बस सिर्फ गाड़ी नहीं, उज्जवल भविष्य की है डगर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करेंगे स्कूल बस के बारे में। अब स्कूल बस के बारे में भला क्या बात हो सकती है, ये आप सोच रहे होंगे। तो चलिए बताती हूँ आपको कि हम बात करेंगे आज स्कूल बसों के, बसों का जो पीला रंग है इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम किसी स्कूल बस को देखते हैं तो सबसे पहले उसका चमकीला पीला रंग हमारी नजर में आता है, और दुनिया के अधिकांश देशों में स्कूल बसों का रंग पीला ही रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, शायद आपको पता है और शायद नहीं भी है। अगर नहीं है तो चलिए आज बताती हूँ मैं आपको कि बसों का रंग पीला क्यों रखा जाता है। सबसे पहले, पीला रंग सबसे अधिक चमकीले रंगों में से एक है। यह धूप, बारिश, कोहरे और शाम के समय भी आसानी से दिखाई देता है। इससे अन्य वाहन चालक स्कूल बस को दूर से ही पहचान लेते हैं और समय रहते ही अपने स्पीड कम कर लेते हैं। स्कूल बस में छोटे छोटे बच्चे सफर करते हैं। बस के रुकने या चलने के समय बच्चे सड़क पार करते हैं। पीला रंग अन्य वाहन चालकों को तुरंत सतर्क कर देता है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव आंख पीले रंग को अन्य कई रंगों की तुलना में जल्दी पहचान लेती है। यही कारण है कि चेतावनी संकेतों और सावधानी से जुड़े कई बोर्ड में भी पीले रंग का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए स्कूल बसों का रंग भी पीला ही रखा जाता है। बारिश हो, धुंध हो, बादल या कम रोशनी जैसी परेशानियों में भी पीली बस आसानी से दिखाई देती है। इससे सड़क पर चलते रहे अन्य वाहन चालक पहले से सावधान हो जाते हैं। पीला रंग स्कूल बस को सामान्य बसों से, अन्य वाहनों से अलग पहचान देती है। लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि यह स्कूल बस है और इसमें छोटे बच्चे यात्रा कर रहे हैं, और इसी कारण वह अपनी गाड़ी रोक भी लेते हैं या स्पीड धीमी कर लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। इसी तरह की और भी बातें करेंगे आज हम स्कूल बसों के पीले रंग के बारे में। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है तारे जमी पर फिल्म से।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम। तो दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 MHz पर। और इस कार्यक्रम के दौरान आज हम बातें कर रहे हैं कि स्कूल बसों के रंग को पीला ही क्यों रखा गया है। दोस्तों, पीली स्कूल बस देखकर वाहन चालक सतर्क तो हो जाते हैं और साथ ही साथ कई देशों में स्कूल बस की

रुकने पर अन्य वाहनों को भी रुकना पड़ता है ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके। स्कूल बस का पीला रंग केवल उनकी सुंदरता के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ये बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी अधिक दृश्यता, आसान पहचान और चेतावनी देने की क्षमता के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में स्कूल बसों के लिए पीले रंग को अपनाया गया है। ये एक छोटा सा निर्णय जरूर है, लेकिन हर दिन लाखों बच्चों की सुरक्षित यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पता जरूर चल गया होगा कि बसों का रंग पीला क्यों होता है और ये जरूरी भी क्यों है। तो चलिए अब आगे लिए चलते हैं आपको अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है बर्फी फिल्म से।

तो दोस्तों बर्फी फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्ते डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्ते डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: समाधान आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीकों से करने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई के नोंगताओ में निर्माणाधीन महाबोधि कौशल विकास केंद्र के कार्य की प्रगति का किया निरीक्षण। आज छामलिंग से तवांग मठ होते हुए ऐतिहासिक तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा बाइक सह साइकिल यात्रा का किया गया आयोजन। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्या बाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान अगले महीने से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का करेगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार देश की प्रदर्शन कलाओं, संगीत नाट्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा है कि संगीत की अनेक प्रणालियां हैं, नृत्यों की कई शैलियां हैं और लोक रंगमंच के अनगिनत रूप हैं।
1: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो वस्तु कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने कहा है कि कलाकार देश भर में समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश की लोक कलाओं के विलुप्त होने के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कलाओं का दस्तावेजीकरण करना और उन्हें जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला दीक्षा कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने वरिष्ठ कलाकारों से अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का आग्रह भी किया।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: अरुणाचल प्रदेश से दोमिन कारबाक को स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रूमी तक को लोक रंगमंच और पारंपरिक लोक नृत्य के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों राज्य के बीच का संबंध सीमाओं से कहीं आगे है। पीढ़ियों से दोनों राज्यों के लोग प्रेम और आपसी सम्मान के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल के वर्षों में दोनों राज्य ने संवाद और मैत्रीपूर्ण भावना के माध्यम से सीमा से जुड़े अधिकांश मतभेदों का समाधान किया है। अब केवल 52 गांव शेष है और दोनों राज्य की सरकारें इसी भावना के साथ बातचीत जारी रखते हुए सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझाने का प्रयास करेंगी। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि मतभेदों का समाधान हमेशा संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की है कि मतभेदों को असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत संबंधों पर ही हावी न होने दें। इस बीच बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी से पश्चिमी की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार को वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। मिसिंग समुदाय के संगठन TMP के समर्थकों द्वारा नाकेबंदी किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। सोमवार को असम अरुणाचल सीमा के पास हिमे गांव में हुई हिंसक घटना के विरोध में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में नोंगताओ में निर्माणाधीन महाबोधि कौशल विकास केंद्र के कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विहार और 108 फुट ऊंचा भगवान बुद्ध की प्रतिमा आध्यात्मिक विकास तथा ताई खामती संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने नामसा स्थित महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज में 100 बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्माणाधीन महाबोधि मॉन्क्स हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा भी की।

0: आज अरुणाचल प्रदेश के चामलेंग से तवांग मठ से होते हुए ऐतिहासिक तवांग यूथ स्मारक तक तिरंगा बाइक एवं साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के पहले तवांग टाउनशिप में तवांग मठ से चांगबू तक तीनों प्रमुख बाजारों और आसपास के कॉलोनियों सहित आम लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। लोगों ने एकजुट होकर अपने आसपास के क्षेत्रों को सफाई और सौहार्दपूर्ण सौंदर्य तरीके से योगदान बना दिया है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुई मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा में 19 बैठकें आयोजित की गई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई है।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट्स पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्या बाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि अहिल्या बाई होलकर ने मंदिरों के जीर्णोद्वार और पुनर्निर्माण से लेकर तीर्थ स्थलों के विकास तक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्वार में अद्वितीय योगदान दिया। गृहमंत्री ने कहा है कि महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने के माध्यम से अहिल्या बाई होलकर ने जनकल्याण, न्याय और सुशासन का आदर्श स्थापित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिल्या बाई होलकर ने जन केंद्रित शासन, अदम्य साहस और कुशल प्रशासन का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री सिंह ने कहा है कि उन्होंने समाज के वंचित और जनजातीय समुदायों की आजीविका और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका जीवन न्याय, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, जन कल्याण और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रेरणादायक गाथा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान अगले महीने 13 से 17 तारीख तक दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन करेगा। ये श्रृंखला अफगानिस्तान के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम FTP का हिस्सा है। श्रृंखला का आयोजन भारत में किया जाएगा, जहां अफगानिस्तान हाल के वर्षों में अपने घरेलू मुकाबले आयोजित करता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के समक्ष लंबित मामलों की बढ़ती संख्या का गंभीर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से मामले के शीघ्र निपटान के लिए क्षेत्रीय और सर्किट पाठों की स्थापना पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने राज्य और जिला उपभोक्ताओं आयोग के कार्य निष्पादन का ऑडिट करने के भी निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने NCDRC के अध्यक्ष को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें लंबित मामलों की कुल संख्या, दर्ज की गई शिकायतों की संख्या, औसत निपटान दर, लंबित मामलों के निपटान में लगने वाले अनुमत समय और आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ने की आवश्यकता है या नहीं, इसका विस्तृत विवरण हो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Nara Koya. President Draupadi Murmu today presented the Sangeet Natak Academy Fellowships and Awards for the years 2024 and 2025 to over 100 artists in a special investiture ceremony in New Delhi. The awards were given for making contributions towards country's performing arts, music, dance, theater, folk and tribal arts, puppetry, traditional theater and other allied forms. Speaking on the occasion, the President said the awardees reflect talent and dedication of modern India. She said that artists are playing a vital role in preserving the rich folk culture across the country. Several union ministers, including Home Minister Amit Shah, Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda, and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, today joined the Har Ghar Tiranga campaign by hosting the tricolor. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the campaign is strengthening the sentiments of patriotism and a sense of pride in the hearts of every Indian. After hosting the tricolor at his residence in New Delhi, Mr. Shah said that crores of citizens are connecting with the tricolor and strengthening the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. Both the Houses of Parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of Parliament, which began on the 28th of last month, concluded today after having 19 sittings spread over 25 days. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. The bill also seeks to take under its control the regulation of mineral-bearing lands having mineral contents in accordance with the parameters prescribed under the Mines and Minerals Development and Regulation Act. The Kolkata High Court has cancelled OBC, all certificates issued under the OBCA and OBCB classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. Holders of these certificates will no longer be treated as belonging to the general category. The controversy dates back to 2010 when the state divided OBC communities into OBCA and OBCB categories. In 2024, the High Court had struck down the inclusion of 66 communities in the OBC list and ordered a fresh survey. After the BJP government came to power in 2026, it abolished the OBCA and OBCB classification and introduced a single OBC category. The Subhendu Adhikari government also withdrew the previous administration's challenge in the Supreme Court. With the legal challenge withdrawn, the earlier certificates lost their legal basis, leading to Wednesday's High Court order. The National Biodiversity Authority has released over 15 crore rupees in excess and benefit sharing proceeds from mustard genetic resources. The amount will flow to 26 state diversity boards and 3 union territory diversity councils, with the ABA as the share calculated based on the area under mustard cultivation in each state. The release is part of the NBA's ongoing effort under the Biology Diversity Act 2002 to ensure that when India's genetic resources create commercial value, a fair share flows back to conservation and to the states and communities that sustain such diversity. In US, several states are issuing special proclamation to commemorate August 15 as India Day, celebrating India's independence, rich heritage and diversity, as well as growing contributions of Indian American diaspora to the American fabric. Delaware is the latest state, following New York, New Jersey, and Massachusetts, to issue a proclamation marking India's Independence Day. Delaware Governor Matthew Mayer said a proclamation and urged all citizens to celebrate India Day. Colombian President Abelardo de la Esprilla has declared an economic emergency to enable the government to take exceptional measures for relief and reconstruction of following a powerful earthquake. The 7.4 magnitude earthquake struck Colombia on Monday this week, affecting around 54,000 people and causing widespread damage. U.S. President Donald Trump said that the United States has total control over the Strait of Hormuz and indicated that Washington intends to retain its hold over the strategic waterway. In a social media post, U.S. President further claimed that Iran is facing a deep economic crisis. That is all in this news bulletin. Namaskar.
3: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सुन पाएंगे नुक्ति श्रोताओं का कार्यक्रम.
4: आया आकाशवाणी ईटानगर चा थर्सडे सिक्रोम नाम अगस्त द हजे किनी यौ किनी सरोयंग अमन्ना जंबंगरो बंगाचू ने जेंतमुन्या. असम से अरुणाचल खोन्या

0: वेलकम बैक दोस्तों, मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए फटाफट अब आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी

संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि इस गीत को आप सुन रहे थे पापोन की आवाज में सुल्तान फिल्म से, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ, निराश होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मजेदार गीतों का आनंद आप लेते रहेंगे। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट की ओर, यानी कि शाम की महफिल की ओर।

शाम ढली तो आसमान ने रंग बदल लिया, हवाओं ने भी अपना अंदाज बदल लिया। वक्त की यही तो खूबसूरती है, हर पल एक नया एहसास दे देती है। श्रोता, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम शाम की महफिल में, और पहला गीत आप सुन रहे हैं कुमार शानू की आवाज में।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90

दोस्तों, जब साथ अपनों का हो, अपने चाहने वालों का हो, तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए। बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का पुलिस की रिफिल्म से।

दोस्तों, चांद की खूबसूरती के बारे में क्या ही कहूं। चांद की रोशनी में एक अलग ही नूर होता है। हर अंधेरी रात का वही तो गुरूर होता है। जो देख ले उसे एक नजर भरकर, उसके दिल में सुकून जरूर होता है। बताना चाहेंगे आपको कि आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का कुमार शानू की आवाज में। आओ प्यार करें फिल्म से।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप आनंद ले रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। श्रोता, बताना चाहेंगे आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हमारा स्पेशल कार्यक्रम व्हाट्सएप अरुणाचल, जहां पर आप सुन पाएंगे आज चर्चा का विषय रहेगा इंटरनेशनल यूथ डे।

0: Namaskar. What's up, Arunachal? A joint presentation of DD Arun Prabha and Akashvani Itanagar. मैं हूं आपका होस्ट गदो अतर. युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं. उनके विचारों में नई ऊर्जा होती है, उनके सपनों में नए भारत की तस्वीर होती है और उनकी प्रतिभा में समाज को नई दिशा देने की क्षमता होती है. आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है युवा नेतृत्व, युवा सहभागिता और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को समझने के लिए. व्हाट्सएप अरुणाचल के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर, और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो बेहद खास अतिथि मौजूद हैं. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अविदा बेगम जी का, जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के स्टेट लेवल विनर है और नेशनल लेवल पार्टिसिपेट भी है. साथ ही हमारे दूसरे विशेष अतिथि है विनीता चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ईटानगर. मैम, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है. तो सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं. आगाज करते हुए हम सबसे पहले मेरा सवाल ये विनीता मैम आपसे ये रहेगा कि आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है.
1: सभी को नमस्कार एंड थैंक यू मुझे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इनवाइट करने के लिए. अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि युवाओं की एक सशक्त राष्ट्र को निर्माण करने में क्या भूमिका रह सकती है उसको हम आइडेंटिफाई करें, जो यूथ है उसके पोटेंशियल को हम आइडेंटिफाई करें एंड हाउ दे कैन बेटर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द नेशन एंड मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेपरेट डे को आइडेंटिफाई किया है एज इंटरनेशनल यूथ डे. एज कैलाश सत्यार्थी सेज दैट द पावर ऑफ यूथ इज द कॉमनवेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. सो ऑन दीज लाइन्स दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल यूथ डे.
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मैम, दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस वर्ष इंटरनेशनल यूथ डे की थीम डिफरेंट कंटेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन है. अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य के युवाओं के संदर्भ में आप इस थीम को किस तरह से देखते हैं.
1: जो थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कॉमन एस्पिरेशंस, मेनली ये है कि युवा हर तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं. हर जगह के युवाओं को अगर हम देखें वो पूरे चाहे विश्व के हो या फिर भारत में हो या फिर अरुणाचल में हो, सबका सोशल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग होता है
0: जी.
1: लेकिन सबका एस्पिरेशन तो कॉमन ही है. हर युवा ये चाहता है कि उसे एक खुशहाल जीवन मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज हो, उनके कल्चरल एनवायरमेंटल और डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोटेक्टेड रहें. तो इसी तरीके से जो हर जगह का जो युवा है वो कनेक्टेड है, बेशक वो किसी भी तरीके से के बैकग्राउंड से आता हो, लेकिन उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो एक ही होती है, जो एक अच्छी जिंदगी चाहती है.
0: जी जी, धन्यवाद. तो हम अगला सवाल जो है आबिदा बेगम जी की ओर मैं रुख करना चाहूंगा. तो उससे पहले मैं, जब हम देश में यूथ के यानी कि युवाओं की बात करते हैं तो हमारे देश के बहुत ही जाना माना आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त ना हो. तो मैम, आपने राज्य स्तर पर बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूथ पार्लियामेंट 2026 में स्टेट लेवल विनर बनने तक का आपका सफर कैसा रहा और आपको यूथ पार्लियामेंट में भाग लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली.
2: सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इनविटेशन देने के लिए. ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे एज अ यूथ यहाँ पर आना, यहाँ पर ये बहुत ही प्राइड मोमेंट है फॉर मेरे लिए. सर, ये जो जर्नी रहा ये मेरे लिए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ. डिस्ट्रिक्ट से मैं स्टेट पे गई और स्टेट से फिर मैं नेशनल लेवल पर गई. तो यहाँ पर ये जो नेशनल लेवल यूथ पार्लियामेंट है ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस, जो जर्नी है एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट है मेरे लिए. यहाँ पर पार्टिसिपेट करके मुझे ये एहसास हुआ कि दिस यूथ पार्लियामेंट इज नॉट ओनली फॉर अबाउट कॉम्पिटिशन. ये सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे यूथ आगे आते हैं, अपना जो ओपिनियन है वो देते हैं और देश उसे सुनता है, उसमें हमारा भागीदारी होता है. सर, इसमें पार्टिसिपेट करने की जो प्रेरणा है वो मुझे मेरे प्रोफेसर्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स उनसे मिले, मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से, और हमारे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत में यूथ के पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मुझे वो प्रेरणा मिली कि मेरा कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जैसे कि आज मैंने ईदू अटायर पहना, तो ये इसमें प्रेरणा मुझे सबसे ज्यादा मेरे एक ईदू मिशमी कम्युनिटी के एक अंकल से मैंने, जिन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं इस पब्लिक स्पीकिंग में और थोड़ा काम करूंगी, वर्क करूंगी, तो मेरा आवाज और नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है और ये पहुंचा भी. तो धन्यवाद मेरे पेरेंट्स को और मेरे अंकल और पूरे कम्युनिटी को.
0: ओके, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पिरेशन यात्रा आपका रहा. तो आप एक युवा होने के नाते जो है अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में युवाओं को जो नशे से बचाने के लिए जो किन विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, आप कैसे देखते हैं?
2: सर, नशा एक ऐसा चीज है जो जब इसका लत लगता है वो कई कारणों की वजह से होता है. ऐसे यूथ मुझे लगता है कि जब हम बेरोजगार होते हैं, जब हमारे पास काम नहीं होता, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता, हमारे पास ऐसा फील्ड नहीं होता कि जहां पर हम अपना टैलेंट शो कर सके, अपना जो भी हम हमारे अंदर जो भी वो स्किल्स है तो वो हम उसे अगर शोकास्ट नहीं कर सकते तो हम ऐसे नशे जैसे चीजों पर हम एंगेज हो जाते हैं. तो ऐसे नशे जैसे चीजों पर अगर हमें एंगेज नहीं रहना है, अगर उससे बचे रहना है, तो इसमें पूरे कम्युनिटी को साथ आकर काम करना पड़ेगा. क्या होता है कि हम लोग जब भी देखते हैं कि यूथ जो नशा कर रहे हैं तो हम लोग उसको ऐसा वे में हम लोग उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं जैसे कि बहुत डिफरेंट वे में. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे प्यार से समझाने की जरूरत है. गाइडेंस, अवेयरनेस एक ऐसा चीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे नशा मुक्त, जैसे कि नशा मुक्त योजना, ऐसा बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा लाया गया है. तो ऐसे चीजें नशा को, नशा मुक्त युवाओं को नशा से बचा सकते हैं. साथ ही साथ में परिवार का योगदान होना, परिवार को समझाना चाहिए कि ऐसे नशे से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते. तो नशे के बारे में खुलकर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम ऐसा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई बात ही नहीं करता. जब नशा करते हैं तो उससे लोग दूर रहते हैं, उसे कोई बात नहीं करता. लेकिन उसको बात करना जरूरी है, उसको समझो कि वो नशा क्यों कर रहे हैं. जब पता चलेगा कि वो नशा क्यों कर रहे हैं तब तो हम उसका रीजन, हम उसका सोल्यूशन ला सकते हैं. जी सर, तो मेरा वही मानना है.
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मेरा अगला सवाल है विनीता मैम आपसे है. तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राज्य के दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले युवाओं तक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पहुंचाने में सबसे बड़ी जो है चुनौतियां क्या हो सकती है?
1: ये एक बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि जैसा अरुणाचल के अगर हम ज्योग्राफी को देखते हैं तो यहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो कुछ जो दूरदराज इलाके हैं, जैसे क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, जो दूरदराज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से कनेक्टिविटी काफी पुअर है. एक तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूथ कम्यूट नहीं कर पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह के लिए. दूसरा एक बड़ा चैलेंज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंस है. हर जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, ये सब प्रेजेंट नहीं है. तो जो गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स हो गया या विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, वो हर जगह नहीं पहुंच पाती है. तीसरा एक अवेयरनेस का गैप भी है. सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट और बीट स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट यूथ को पता ही नहीं है कि उनके लिए वो स्कीम्स भी हैं. तो ये एक अवेयरनेस का जो गैप है ये हमें फिल करना होगा जिससे कि यूथ को पता हो कि उसके लिए क्या स्कीम्स हैं. चौथा एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अभिदा जी ने मेंशन किया और आपने भी मेंशन किया कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना और म्यांमार के साथ, वहां पे जो ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है. तो जब युवा उसकी गिरफ्त में आ जाता है तो उसको भी एक छुड़ाना बहुत मुश्किल है. तो वो मेन स्ट्रीम में आना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
0: जी, तो मैम सीमावर्ती इलाके या दूरदराज इलाकों में जो अभी आपने कहा कि इस तरह से कई सारे सरकार की ओर से स्कीम है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो वहां तक पहुंचाने में आपके जो यूथ ऑफिस की तरफ से जो सरकार की ओर से मतलब किस तरह की सहायता मतलब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं?
1: हमारा जो प्लेटफॉर्म है माय भारत प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं मेरा युवा भारत, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव है. ये एक ऑटोनोमस बॉडी है. सो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां जिसका फिजिकल प्रेजेंस भी है और डिजिटल प्रेजेंस भी है. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वी हैव डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स प्रेजेंट, उनके ऑफिसेज हैं एंड द ऑफिसर्स आर देयर सेल्फ प्रेजेंट. कोई भी यूथ को कोई जरूरत होता है वो वहां पे जाके अपना पूरी कर सकते हैं. प्लस जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे मेंटरशिप कोर्सेज भी होते हैं, उन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसा कि अभिदा जी यूथ पार्लियामेंट से होके आई है, ऐसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है जहां पे जो दूरदराज इलाकों के भी यूथ है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी भी आवाज सुनी जाती है. तो इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. अभी लेटेस्ट आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, प्रसार भारती का जो इनिशिएटिव है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, वो कुछ ही स्टेट्स में है, कुछ ही स्टेट में ही इम्प्लीमेंट हुआ है. तो जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज अरुणाचल में भी इम्प्लीमेंटेड है. यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल्चर को शोकेस कर सकते हैं और उसमें भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे ही बहुत सारे माय भारत पोर्टल पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं।
3: मेरा युवा भारत यानी माय भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीक, सहभागिता और अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। देश भर में माय भारत से 2,20,00,000 से अधिक युवा और 1,20,000 से अधिक संगठन जुड़े हुए हैं। यह मंच 22 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है तथा युवाओं के लिए 1,50,000 से अधिक स्वयं सेवा अवसर प्रदान कर चुका है। यह एक फिजिकल यानी डिजिटल और भौतिक दोनों माध्यमों पर आधारित मंच है जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सामुदायिक विकास की गतिविधियों से जोड़ता है। यह पहल वॉलंटियरिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध कराती है, साथ ही युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देकर विकसित भारत के निर्माण में उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईटानगर पापुमपारे जिले में अब तक 6,963 युवा पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा 20 MBO पंजीकृत, 8 शैक्षणिक संस्थान ऑन बोर्ड, 94 एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स तथा 170 वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज इस मंच पर प्रकाशित किए गए हैं। विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
0: व्हाट्सएप अरुणाचल। तो आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो विनीता मैम बताएं कि जो दूर दराज इलाके और जहां तक जो है पहुंचाना चाहिए कुछ उपलब्धि सरकार की ओर से, तो आपने विस्तार से बताया और आपका यूथ जो डिपार्टमेंट की ओर से भी इस पर बहुत ही काम कर रहे हैं, तो इस विषय पर आप इतना विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगला सवाल जो है आबिदा जी से है, तो मैं आपकी ओर आना चाहूंगा। तो आज की डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल स्किल्स अरुणाचल के युवाओं के करियर अपॉर्चुनिटीज को किस तरह बदल रहे हैं?
2: सर, डिजिटल स्किल्स और टेक्नोलॉजी कई माध्यमों से और कई तरह से हमारे जो अरुणाचल के बच्चे, हमारे यूथ, जो भी मेरे फेलो यूथ्स हैं, उन लोगों के करियर बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल दूं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण आज देख सकते हैं हम कि अनिनी जैसे जगह जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं जा सकता था, पर वहां पर आज टेक्नोलॉजी जाने की वजह से, डिजिटल एरा आने की वजह से वहां पर बैठे एक लड़की भी अपना जो भी क्राफ्ट है, अपना जो भी हैंडलूम है, जो भी अपना बनाया हुआ, उसको शोकास कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, वहां बैठे वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, तो उससे उसको करियर अपॉर्चुनिटी भर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं। तो डिजिटल एरा हमारे अरुणाचल के लिए बहुत ही ज्यादा योगदान यूत्याने का रहा। उससे कहीं कई देशों से, अभी अरुणाचल पहले कनेक्टेड नहीं था दूसरे जगह से, लेकिन ड्यू टू द टेक्नोलॉजी की वजह से आज अरुणाचल के जो वैलीज हैं, जो सुंदर सुंदर जगह हैं, सीनेरिटिक जो है, वो हर आदमी लोग आ रहे और उसे देख रहे हैं। तो उससे एक करियर ऑप्शन बनते हैं कि हमारे जो यूथ है अरुणाचल के, वो डिजिटल के साथ, डिजिटल एरा के टेक्नोलॉजी के वजह से वो कंटेंट क्रिएट कर शुरू कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं और एक अलग फील्ड, एक अपार्ट फ्रॉम जॉब, वो अपना एक नया फील्ड क्रिएट कर सकें।
0: तो आप मतलब आज के जमाने में जैसे अनिनी जैसा स्थान में भी, क्षेत्र में भी, जो डिजिटल के माध्यम से अपने बुनकरों को और अपनी प्रतिभा को जो सब कुछ मतलब दिखाने का मौका मिल रहा है।
2: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगला सवाल आपसे है विनीता मैम, क्या अरुणाचल के युवाओं को अपने राज्य में ही करियर बनाने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? अगर नहीं तो किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है?
1: राज्य में पर्याप्त अवसरों की बात करें तो डेफिनेटली इस फील्ड में काम हो रहा है, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं सरकार की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, बट फिर भी एक जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो जील है वो लाने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, एरिया है बहुत ज्यादा कल्चरली डाइवर्स है, यहाँ का जो टैलेंट है उसको शोकेस करने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ का यूथ को मैंने देखा है वो एडवेंचर को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट. देन जो यहाँ का जो टेक्सटाइल है, क्विजीन है, उसको भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस करने के लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है.
0: जी धन्यवाद. तो आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को देखते हुए अरुणाचल के युवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो है सतत विकास में क्या भूमिका निभा सकते हैं.
1: अरुणाचल जैसे कि खुद ही एक बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी से रिच एरिया है, यहाँ का 80% जो एरिया है फॉरेस्ट से कवर्ड है नियरली. तो यहाँ का जो यूथ है, क्योंकि सब जनजातियां हैं और जनजातियों का हमें पता है कि उनका जल, जंगल और जमीन से बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड हैं उस चीज से. तो वो चाहते हैं कंटिन्यूअसली इस चीज में काम करना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो वो अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स कर सकते हैं, क्लीनिनेस ड्राइव्स कर सकते हैं और नेशनल लेवल तक भी इस आवाज को लेके जा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन बायोडायवर्सिटी के एंड एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए. हमारे साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं. माय भारत के बहुत सारे यूथ क्लब्स होते हैं, वो अपने यूथ क्लब्स बनाएं, उनको हमारे साथ रजिस्टर करें और हम भी उनका फिर कैसे देख उनके साथ कैसे हम काम कर सकते हैं वो हम भी एक्सप्लोर करेंगे.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. तो मेरा अगला सवाल आबिदा जी आपसे है, स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज में अरुणाचल की जो संभावनाओं को देखते हुए युवाओं के लिए इस क्षेत्र को करियर ऑप्शन बनाने के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है.
2: सर अरुणाचल एक बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है हमें मालूम है, और इसका एग्जांपल जैसे कि एडवेंचर और ये स्पोर्ट्स एज अ करियर हम लोग कैसे बना सकते हैं अरुणाचल में, तो इसका रिसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूंगी. रोइंग में हाल ही में 22nd नेशनल MTB चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि साइकिलिंग था, जिसपे आपके इंडिया से 28 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया. तो ये दर्शाता है कि रोइंग जैसा प्लेस अरुणाचल एक एडवेंचरस प्लेस बन सकता है, और इस पे साइकिलिंग जैसे एडवेंचरस जो एक स्पोर्ट है या फिर आप कह सकते हो उसमें जो हमारे यूथ हैं वो पार्टिसिपेट करे और उसे एज ए करियर भी चूज किया जा रहा है. उसके अलावा जब हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो फुटबॉल एंड क्रिकेट मोस्टली हमें ऐसा लगता है, लेकिन इसके अलावा भी वेट लिफ्टिंग आज के जो हाल ही में जो रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था ट्राइबल ऑल इंडिया ट्राइबल गेम्स, उसमें जिसमें अरुणाचल ने 5 गोल्ड मेडलिस्ट लाया, तो ये भी एक दर्शाता है कि अरुणाचल स्पोर्ट्स वेटलिफ्टिंग इसमें अरुणाचल एक करियर ऑप्शन जैसा ये एक आगे बढ़ सकता है और ये एक करियर ऑप्शन बन सकता है. सर
0: जी थैंक यू. इसी के साथ जो है मेरा अगला सवाल आपसे ही है, शिक्षा और रोजगार के अलावा यूथ पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग कितना महत्वपूर्ण है, क्या युवाओं की आवाज पॉलिसी मेकिंग में पर्याप्त रूप से सुनी जा रही है.
2: सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और एज ए यूथ मुझे लगता है कि यूथ का पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज बन रहे हैं वो गवर्नमेंट हमारे लिए बना रहे, यूथ के लिए ही बना रहे, और इंडिया के 65% यूथ ही है वो हमारे लिए बना रहे. तो जब पॉलिसीज हमारे लिए है तो हमारा पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब हम उसमें खुद इंक्लूड होंगे वो पॉलिसी, और वो पॉलिसी जब हमारे लिए इफेक्टिव होगा तब तो देश विकसित बनेगा. जी सर. तो ये जो विकसित भारत और जो ये आपका अगला सवाल क्या था ना.
0: जी मेरा अगला सवाल यही था कि जो है इसमें डिसीजन मेकिंग कितना
2: महत्वपूर्ण है. जी सर. और जैसे कि आपने पूछा कि हमारी आवाज सुनी जा रही है कि नहीं, तो हमारी आवाज सुनी जा रही है, उसको मैं कह सकती हूँ कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है. जैसे कि माय भारत ने हमें जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जो प्लेटफॉर्म दिया, विकसित भारत यूथ डायलॉग प्रोग्राम, तो ये इस तरह का प्रोग्राम ये हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है और हमारी आवाज सुनी जा रही है. नेशनल लेवल में लोकसभा के स्पीकर ने मेरी आवाज सुनी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग स्पीकर ने मेरी आवाज सुनी, मेरे ही नहीं पूरे अरुणाचल के यूथ की आवाज सुनी. तो जब हमारी आवाज सुन रहे हैं तो इसके मतलब हमारी भागीदारी हो रही है सर. लेकिन सर हमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की, और हमारा हमें जो पॉलिसी मेकिंग में हमें भी हमारा पार्टिसिपेशन और ज्यादा जरूरी है.
4: When a woman walks freely without constantly thinking about her safety, it's a day when woman leadership is accepted, not because of the reservation, but because society recognizes her capabilities. That day, ladies and gentlemen, I believe woman reservation bill is accepted in our society. कि जिस दिन इस देश की नारी, हर एक नारी ये कह सके कि ये सरकार मेरी है, ये रुतबा मेरा है, ये नाम मेरा है और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भारत की बेटी हूँ और ये भारत मेरा है, उसी दिन से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वास्तविक रूप से सम्मान और सशक्तिकरण स्थापित होगा। कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, रस को निहारने से जान तारे हासिल होते नहीं, कि तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल बनो, करो ताकत दो अपनी पंखों को, एक उड़ान और बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।
0: जी हम रुख करना चाहेंगे विनीता मैम आपकी ओर। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? और साथ ही एक और सवाल इसी के साथ है, माय भारत प्लेटफॉर्म क्या है, ये युवाओं को कैसे मदद कर रहा है?
1: आपका सवाल बहुत ही वैलिड है क्योंकि ये एक जनरेशन जो है वो जेंजी जनरेशन है एंड एज अबिदा ने मेंशन किया कि 65% से ज्यादा हमारी जो आबादी है वो यूथ है, तो राष्ट्र निर्माण में यूथ की ही सबसे ज्यादा भूमिका है। अभी जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं पूरे ही वर्ल्ड में, बीट जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं या फिर क्लाइमेट चेंज है या फिर जो इनइक्वालिटीज जो बढ़ रही हैं, वो सब चैलेंजेस हैं, तो इनके लिए यूथ की भागीदारी बहुत जरूरी है और यूथ एक 360 डिग्री मैनर में इन सब में पार्टिसिपेट कर सकता है। पॉलिसी मेकिंग में अपनी आवाज यूथ को उठानी चाहिए, उसको और बढ़ चढ़ के जो गवर्नेंस है, पॉलिसी मेकिंग है, उसका हिस्सा बनना चाहिए, जिससे कि जो उनके आइडियाज हैं उनको सुना जा सके, उनको पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 इज अप्रोचिंग, AI में डेली नए नए कुछ रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी यूथ की भागीदारी बहुत जरूरी है क्योंकि यूथ ही वो सब स्किल से खुद को इक्विप कर सकता है और उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकता है। दूसरा, जो एक आज थोड़ा सा चैलेंज है कि हमें एक गैप देखने को मिलता है कम्युनिटी के साथ, जैसा कि बहुत ज्यादा डिजिटल एज के कारण मोबाइल्स में लगे रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हम जो सोसाइटी है उसके साथ उस तरीके से बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे जैसे कि पहले हुआ करता था, तो एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव इसके लिए भी जरूरी है कि हम वापस थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, अपने समाज की तरफ भी देखें और उसको भी हर चीज में आगे लेके चले, जिससे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो पाए। आपके अगले सवाल माय भारत से रिलेटेड था, माय भारत इसमें कैसे हेल्प करता है? तो माय भारत जो प्लेटफॉर्म है, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं। सो अगर मैं कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स या सोशल सर्विस की ही बात करूं, तो उसके लिए वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। आप ओल्ड एज होम में जाकर, आप पीडब्ल्यूडी सेंटर्स में जाकर वहां पे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, उन लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी स्किल्स एनहांस करने के लिए किसी भी चीज में ट्रेनिंग कर सकते हैं, माय भारत बहुत सारे फील्ड्स में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता रहता है। देन आप हमारे साथ जुड़ने का मतलब है कि आप एक तरीके से सरकार के साथ ही जुड़े हैं, बहुत सारे जैसे इनिशिएटिव्स, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट है, यंग लीडर्स डायलॉग है एंड अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हुआ था, जिससे कि कल्चरल एक्सचेंज का भी मौका मिलता है। अरुणाचल से 10 जो यूथ है वो अभी गए थे उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू, हर स्टेट से 10-15 पार्टिसिपेंट्स आए थे, वो बॉर्डर विलेजेस में गए थे, तो इससे हमें दूसरे स्टेट्स को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, क्विज होते रहते हैं, ऐसे होते रहते हैं, जिससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम मेरा अगला सवाल अभिदय जी आपसे है, तो स्थानीय समस्याओं के समाधान में जो यूथ लीड इनिशिएटिव है और कम्युनिटी पार्टिसिपेंट जो मैडम ने भी अभी जिक्र किया है, तो कितने प्रभावी हो सकते हैं?
2: सर ये सब आई थिंक इट इज द मोस्ट इफेक्टिव, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जो भी यूथ लीड इनिशिएटिव करते हैं वो इन दिस जनरेशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रखते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जैसे कि क्लीनलीनेस ड्राइव किया जाता है, या तो आपका जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, या तो आपका डोनेशन जो प्रोग्राम ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सारे चीजों में सबसे ज्यादा भागीदारी आपको यूथ के ही देखने मिलेंगे। सबसे बड़ा जो आजकल हम लोग को देखने मिलता है कि स्वच्छ भारत, ये जो आपका विकसित भारत बनाना है, स्वच्छ भारत और क्लीनलीनेस ड्राइव, इसमें सबसे ज्यादा यूथ ही भागीदारी करते हैं, यूथ के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है और यूथ ही है जो लोकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन ला सकते हैं। जो हमारे लिए जो पॉलिसीज बनते हैं वो तो बहुत बड़े लेवल में बनाया जाता है, योजना जो बनाई जाती है, लेकिन यूथ जो है वो लोकल लेवल में काम करते हैं, लोकल लेवल के प्रॉब्लम को समझते हैं और लोकल लेवल के जो भी सोल्यूशन है वो मिलकर ला सकते हैं, जैसे कि आदिसू, आईएमसू, आईएमसू रोइंग में, तो वो लोग सब यूथ यूनियन है। तो सर वो लोग सब मिलकर एक यूथ के जो भी इनिशिएटिव लाते हैं जी सर कम्युनिटी में ज्यादा इफेक्टिव समाधान ला सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगला सवाल मैम आपसे फिर ये करना चाहूंगा, तो अलग अलग ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट्स और कम्युनिटीज से आने वाले युवाओं के बीच यूनिटी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सोशल जो कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा देने में यूथ ऑर्गेनाइजेशन का क्या भूमिका है?
1: सो ये देखा जाता है कि अरुणाचल बहुत ही ज्यादा कल्चरली रिच और डाइवर्स है, बहुत सारी जनजातियां यहाँ पे हैं, सबके अपने अपने हेरिटेज हैं, अपने अपने कल्चर हैं और सब बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा कुछ इनिशिएटिव चाहिए जिससे दोनों के बीच की एक्सेप्टेंस बढ़ सके, उनके बीच का कनेक्शन बढ़ सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो उसी के लिए जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन वो जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इवन नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ तो यहाँ पे हर ट्राइब का एक स्टूडेंट यूनियन है अपना, तो वो जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो ही आपस में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मेनली देखा जाता है कि वो ईटानगर कैपिटल रीजन है तो यहीं पे ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम बाकी स्टेट्स के साथ भी करते हैं। तो अभी जो स्टेट डायरेक्टर सर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ही हमसे बोला था कि हम इस बार का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम यूपी के साथ अरुणाचल के साथ करेंगे।
0: तो मैम ये समय के अभाव है, तो अंत में आप ये इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के अवसर पर आप अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे ये संदेश देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आज के यूथ के अंदर, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आपको अपने आप को स्किल्स के थ्रू इक्विप करना है, चाहे वो फिर डिजिटल स्किल्स हों, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हों, या फिर इमोशनल कोशेंट को बढ़ाना हो, इमोशनली भी आपको बहुत ज्यादा इक्विप करना है खुद को। दूसरा मेरा एक एक्सपेक्टेशन ये रहता है हमेशा कि आपका जो कल्चर है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, हमारे अरुणाचल का कल्चर, आप उसको शोकेस करिए, उसको आगे ले जाइए, उसको एक नया पहचान दिलवाइए एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहिए, वो बहुत ही ज्यादा घातक है, ना केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार और समाज के लिए भी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा
0: जी। थैंक यू मैम। आप भी जो इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी ओर से?
2: सर बिंग यूथ, मैं अपने फेलो जितने भी यूथ हैं, अपने दोस्तों को बस यही कहना चाहूंगी कि हमें जो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को आप सही कहीं से ज्यादा यूज कीजिए, उसमें अपनी भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन दीजिए और जो अपना पोटेंशियल है उसको दिखाइए। आज मैं मेरे जैसे इतने छोटे से जगह से आकर यहां दूरदर्शन जैसे लाइव टेलीकास्ट मेरे साथ हो रहा है और मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री विनीता मैम के साथ दो दिन से रह रही हूं, उनके साथ बैठ रही हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा बात है। तो मेरा बस मैसेज रहेगा कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढने अपने माउंटेन एरिया से दूर मत जाइए, बल्कि यहां अपने माउंटेन एरिया में, अपने अरुणाचल में ही अपना जो अपॉर्चुनिटी उसे क्रिएट कीजिए और आगे बढ़िए।
0: जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।
0: जाते जाते हम आपको यह बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप अरुणाचल एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूज, इश्यूज और इवेंट्स पर चर्चा करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सअप अरुणाचल। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे श्रोता कि आपसे बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि डायलेक्ट न्यूज, जिसके तुरंत बाद एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और मनोरंजन के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे।

0: आरडी दैनिक न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ श्रोता एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

स्वागत है श्रोता आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। हिंदी सिनेमा में हर किसी की अपनी कहानी है और अपना संघर्ष है। किसी को फिल्म पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरी वजह से और भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही एक एक्टर था है यानी कि जिसे फिल्में तो आसानी से मिली क्योंकि उनके पिता एक एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, लेकिन उनकी अपनी कुछ नादानियों की वजह से उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। फिर कई सालों बाद वे संभले और आज सफल करियर के साथ इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त के बारे में, जो अपने स्टार पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं। उनकी हर इच्छा को पूरा किया गया। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बोलने से पहले ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, इसीलिए वह किसी चीज की कद्र नहीं कर पाए। संजय दत्त से जुड़ी कुछ इसी तरह की बातें करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान। नरगिस और सुनील दत्त की पहली संतान है संजय दत्त। नरगिस और सुनील दत्त ने संजू की बहुत ही लाड प्यार से परवरिश की। बचपन में ही संजय की कुछ शैतानियों के कारण उनके पिता ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। लौट कर आए तो फिर पिता ने फिल्म रॉकी के लिए उन्हें साइन कर लिया और फिल्म रॉकी ही ऐसी पहली फिल्म थी संजय दत्त की जिससे उन्हें उनकी करियर की पहली फिल्म मिली और पहली पहचान बनी एज अ स्टार। इसी तरह की बहुत सारी बातें करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का रॉकी फिल्म से।

आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

अभी अभी आपने आनंद लिया रॉकी फिल्म के गीत का। आज हम बातें कर रहे हैं अभिनेता संजय दत्त के बारे में कार्यक्रम आज की कलाकार के दौरान। दोस्तों, बॉलीवुड में संजय दत्त को असली पहचान मिली खलनायक से। यह फिल्म उनके करियर की दूसरी फिल्म थी और इसमें वह नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई और वह रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म की सफलता के बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। तो आइए आनंद लेते हैं इसी फिल्म के इस मशहूर गीत का।

तो दोस्तों, आपने आनंद लिया इस गीत का खलनायक फिल्म से। चलिए इस बार बात करते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में। संजय दत्त की करियर की सबसे यादगार और सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है यह फिल्म। 19 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई। इसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया और निर्माण विधु विनोद चोपड़ा ने किया। दोस्तों, संजय दत्त की करियर की ये सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से मानी जाती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस ने संजय दत्त की एक नई ऊंचाई दी। इस फिल्म ने उन्हें केवल एक एक्शन स्टार ही नहीं बल्कि शानदार कॉमिक और भावनात्मक अभिनेता के रूप में स्थापित किया। इसकी सफलता के बाद 2006 में इसका सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज हुआ और इस फिल्म ने भी बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की।

दोस्तों ये भी बता दें आपको कि मुन्ना भाई एमबीबीएस ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट सहित कई पुरस्कार जीते और कई फिल्म फेयर पुरस्कार से को भी इसने अपने नाम किया।

तो दोस्तों मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म केसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ही अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: Bunika kuda erdir misi kok hime nampom lo yulu yuchu dugbe sila untar gadma mumish nam lega basoka economic blockage menam ham morga uji alho asam state lo tulik la ripuk na khal me patato nitna deli lo alkuna kaba ham baga grik la sangit natak academy fellowship ok award menam ham 2024-25 inga lega ba so chimri aken uru bola ang artist gut ne president dra dra fodi murmu ye jiji pukur ma khabla men pa do ok bharat lega ba art menam lola magic ham alba regna dance theater folk ok travel arts for part 3 traditional tetre ok kib nam te lo alber len daglen gan ge de ne sok evart men nam ham ji ji gad tuk na ba ok arunachal pradesh te te lo ka indigenous cultural heritage ok tradition art men nam lo alba silen gulen ganam le ga ba domin karwa ka ne sandit natak academy evart ham jip kum ok sok tayo lo pok tetre ok traditional folk dance lega ba rumi taki ne ustad bismala khan yuba puraskar ham jip ko mahabla me pa tha do no sinshi pu isma khaswane tan lo pukum lok ka thal do nya do mines or mineral development or regulation amendment bill 2026 ham silo rajya sabha lo approve jinam lega ba parliament lo bill ham pass jige ko kham me pa do ok morga ji alho national cooperative development corporation amendment bill 2026 ham lok sabha lo pass kunam ham rajya sabha ha approve jinang ko lo parliament lo pass jita gi ko kham me pa tha do Central Board of Secondary Education CBSE ha class 12 ga supplementary examination 2026 ga result ha japak jiren pukunama ok school a ga ga at at ga result ha dg local result portal ga result dot dg local dot gov dot in dot lok ka kala la rikna khamna mem pa to Arunachal Pradesh state ga east coming la papum par le parada devang valley changlang tirap ok longding district thelo dogum doraka ajan ba nido ha dukt alba huluk jil ko sogla ga ba sok district ti ne yelo alert ba itanagar ga meteorological center ha jabak ji green class so lwashman sri la namsai district eni lo nido ha ta dukt alba huluk jil ko na khamla chapata kum kham to ka surungan shi pu ye ha bo
1: Si akaswani itano pokuma tanaga da surunga jishime menam tage kuba soko kuba surunga nisime menam
2: नमस्कार दोस्तों निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में आई श्रोता इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर
3: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे अपनी सुरक्षा अपने हाथ सावधान रहे और सुरक्षित रहे सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी धन्यवाद
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

श्रोता, आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में और बताना चाहेंगे आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का सातवां आसमां फिल्म से।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख

से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा करें। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

शान के गाए हुए इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है और ये भी जान लीजिए कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का।

0: handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोता मित्रों नमस्कार। कार्यक्रम अपना गीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके रेडियो साथी गैर अत। यह श्रोताओ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम प्रकृति और हमारे पूर्वजों से जुड़ी कुछ बातें करना चाहेंगे जो कहानियां एवं अनुभवों पर आधारित होंगे। और हाँ, बातों के बीच अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जनजातियों का गीत तो शामिल होंगे ही, क्योंकि ये कार्यक्रम है ही गीतों का। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं मिजुमिसमी गीत से, जिसे गाया है बाफेमसो ताइंग ने।

दोस्तों, आजकल का जो दौर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां हमारे पास लगभग हर चीज के लॉजिक होते हैं। मगर जरा पीछे मुड़ के पुराने जमाने में, खासकर हमारे अपने गांवों के बारे में जब सोचती हूँ, तो देखती हूँ कि वे कैसे हर चीजों को नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ कर रखते थे और कितनी बारीकी से चीजों का आकलन करते थे, चीजों को नोटिस करते थे।

आप सुन रहे थे जमुना सीराम की आवाज में गालो गीत। श्रोता, अगर इस गीत का मतलब समझे तो समझ आता है कि कैसे अपना कैलेंडर नेचर के जरिए हमारे पूर्वज बनाते थे या जानते थे। पुराने जमाने के लोग हर सीजन को पेड़ पौधे या पक्षियों की आवाज से या उनकी दशा से पहचानते थे। कौन सा पेड़ कब किस सीजन में फूलते हैं, फलते हैं या किसके पत्ते किस समय में रंग बदलता है, कौन सी चिड़िया किस सीजन में चहकता है, कौन रोता है आदि।

अभी आप सुन रहे थे अनीता लिंगे की आवाज में ईदू गीत। श्रोता ट्यून किया है आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, और जिस पर कार्यक्रम चल रहा है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये निशी गीत गोरा तारुप की आवाज में।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि भले ही जमाना टेक्नोलॉजी का हो, साइंस का हो, पर क्यों ना हम भी कुछ वक्त नेचर के साथ बिताएं? क्यों ना इन बड़े बड़ी इमारतों से दूर, हरियाली से भरे उन पहाड़ों में, उन गांवों में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का दबदबा नहीं है, वहां जाए और उन पक्षियों को देखे और सुने ये वादियां हमसे क्या कहना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं।

जानू तेची की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत, और अपना गीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुत्सा गीत सोमगाक सोंगतेंग की आवाज में।

श्रोता, इसी तुत्सा गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यही पर संपन्न होता है। एक और नए अंक के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। अब समय हो गया है कुछ पाश्चात्य संगीतों का। आइए श्रोता आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

कभी मुस्कान बनकर कभी आंसू बनकर पुराने गीत हर एहसास जगा जाते हैं। जो बातें लफ्जों से कहना पाए हम वो ये नगमे चुपके से सुना जाते हैं। दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत में। पहला गीत आपने सुना खेल खेल में फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, और बता दूं आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का कर्ज फिल्म से।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

वक्त बदल गया, लोग बदल गए, मगर पुराने गीतों की बात नहीं बदली। आज भी जब कानों में गूंजते हैं, दिल की धड़कन और यादें चल पड़ती हैं। बता दो दोस्तों, क्या आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का बड़े दिल वाले फिल्म से?

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: दोस्तों, शोर फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम भूले बिछड़े गीतों का यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
2: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर बहल, सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
3: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
2: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य हैं। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
3: एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम ICMR कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए ICMR क्या कर रहे हैं। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये और आईसीएमआर इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है, और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हिपैटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं, और पूरे विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा।
2: बिल्कुल, आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला, क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
3: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है, और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
2: और इस काम में ICMR, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं, क्या AI और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
3: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे UPI को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध है वो हमारे पास भी उपलब्ध है।
2: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। ICMR इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
3: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस में अब डेंगू जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है, डेंगू होता है, वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
2: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी ICMR ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
3: बिल्कुल, ये इंटरवेंशन जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा कि उसके प्रभावों को कम करें।
2: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
3: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखें, अपने को, इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि ये आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें, और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप AI अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी AI के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा।
2: डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए, देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन उत्सम्पन्न बनाना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपया घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्कन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्कन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत के कुल निर्यात में जुलाई में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति का मुद्दा वैश्विक स्तर पर पहुंचा। कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान की कार्रवाई और अत्याचारों को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण के दावे को खारिज किया। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत द्वारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को लेकर चीन और रूस ने इस वर्ष भारत के समर्थन की पुष्टि की है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
2: राजदूत शू ने कहा कि चीन, भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मामलों में समूह की भूमिका को मजबूत करने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए समूह को व्यवहारिक सहयोग और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। चर्चा में समावेशिता, बहुपक्षवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए एक लचीली और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की 2026 के ब्रिक्स की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलोव नियांती के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में केन्या की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर मोसेस वेंचगुला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और केन्या के बीच ऐतिहासिक जनसंपर्क संबंधों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में अशांति ने कश्मीरी प्रवासियों द्वारा पाकिस्तान के प्रायोजित आतंक को उजागर करने के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। बेल्जियम में कश्मीरी प्रवासी समूहों ने पीओजेके की स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। इटली में बिलोंगना में प्रवासियों के बड़े प्रदर्शनों की सूचना मिली, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई हत्या और कथित दुर्व्यवहार की निंदा की गई। ब्रिटेन में भी पाकिस्तानी राजनयिक परिसरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से आज प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि कब्जे वाले क्षेत्र में अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 100 लोगों को मार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहरा है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट।
3: सुरक्षा परिषद की आतंकवाद संबंधी विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधन निगरानी टीम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष नवंबर में हुए इस हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी AQIS की मानी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। संगठन बड़े समूहों के बजाय छोटे और अलग अलग गुटों के जरिए काम कर रहा है तथा उसने अपने लॉजिस्टिक और वित्तीय नेटवर्क मजबूत किए हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि AQIS बांग्लादेश का इस्तेमाल वहां अपने आतंकी सेल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। टीम ने दक्षिण एशिया में आतंकवादी खतरों के बढ़ने की आशंका जताई है। इससे पहले फरवरी में जारी टीम की एक रिपोर्ट में लाल किले के पास हुए हमले को जैश ए मोहम्मद से जोड़ा गया था। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है। विदेश मंत्री अराग्ची ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में खुफिया विफलताओं के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा बार बार गलत अनुमान लगाने का आरोप लगाया। ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है और वो इसे बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये रणनीतिक जलमार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने आज अपने महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया। राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के कुल निर्यात में जुलाई में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति का मुद्दा वैश्विक स्तर पर पहुंचा। कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान की कार्रवाई और अत्याचारों को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अमरीका के